0: मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ। मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ। मैं करता हूँ और समझ जाता हूँ। यह एक पुरानी कहावत है जो हमें बताती है कि सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सुनने से हमें जानकारी मिलती है, लेकिन वह जल्दी ही भूल जाती है। सुनने से हमें नए विचारों और जानकारी का पता चलता है, लेकिन उसे याद रखने के लिए हमें उसे दोहराना होता है। देखने से हमें जानकारी याद रहती है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो हमारी आंखें उसे कैप्चर कर लेती हैं और हम उसे आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं, तो हम उसे वास्तव में समझ जाते हैं। अभ्यास करने से हमें अनुभव मिलता है और हम उसे आसानी से याद रख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है।
1: सुप्रभात, नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार ईटानगर। आप सभी का आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है। आज मई 2026 की 21 तारीख है और हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 5:55 हो चुके हैं। इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले एवं तकनीकी अभियंता एम जिर्दो। और अपनी आवाज के साथ मैं आपकी आरजे बिंदुम दिंदो मंच। दोस्तों, सुबह की पहली किरण हमें याद दिलाती है कि हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। कल की परेशानियों को पीछे छोड़कर आज को एक नई उम्मीद, नई हिम्मत और नई मुस्कान के साथ शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह हमें एक और मौका देती है बेहतर बनने का और बेहतर करने का। आप सभी को दोस्तों एक खूबसूरत और सफल दिन की शुभकामनाएं। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रभातकालीन प्रसारण सभा। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे अब से लेकर सुबह के 11:10 तक के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह के ठीक 6 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद 6:10 पर प्रसारित

0: जिसके बाद 7:40 पर प्रसारित होगा सदाबहार का खास कार्यक्रम। हम देंगे आपको लोकल अनाउंसमेंट, साथ ही सुनेंगे कुछ बेहतरीन गीत। ठीक 8 बजे दोस्तों आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज के लिए, जिसके बाद आज 8:30 से लेकर 8:40 तक आप बने होंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए। 8:40 पर श्रोताओं हम लाएंगे आपके लिए हेलो ईटानगर का खास कार्यक्रम। ठीक 9 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। 9:10 पर दोस्तों हम लाएंगे फिल्मी गपशप, बातें होंगी ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया में बॉलीवुड न्यूज, मूवी रिव्यूज, ओटीटी अपडेट्स सभी आपको देंगे फिल्मी गपशप का हमारा ये खास कार्यक्रम में। ठीक 10 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद 10:10 पर हम प्रसारित करेंगे दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड का खास कार्यक्रम, आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम। तो दोस्तों अभी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9436887808। इस नंबर पर अपने फेवरेट सॉन्ग्स, अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट, अपने डेडिकेशन लिख दीजिए हमें और हम वो सब फुलफिल करेंगे आपके लिए रेडियो ऑन डिमांड का खास कार्यक्रम में। दोस्तों ठीक 11 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए। तो ये थी आज की हमारी प्रभातकालीन प्रसारण सभा की रूपरेखा। अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और सीपीआईएम ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र के द्वारा प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। सुबह की इस पवित्र और सुहानी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय है हमारा विशेष प्रस्तुति भक्ति गीत, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की महिमा, श्रद्धा और प्रेम से भरे मधुर भजन और भक्ति गीत। इस शुभ प्रभात में जब प्रकृति भी धीरे धीरे जाग रही है, आइए हम भी अपने मन को पवित्र विचारों और भक्ति रास में भर लें। कुछ पल के लिए रोजमर्रा की चिंताओं से को भूलकर भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का भक्ति गीत और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर बने रहे, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए।

0: दोस्तों, ये था कार्यक्रम भक्ति गीत। अब आप सुनेंगे गानों।
1: आकाशवाणी ईटानगर तनगा दम रोगम जाब एमदगला लुसिर पोलोग हम गो लोक एन आरोगो गालो मेन के नाबा लोक मेलें जिदा नांगो मारियो मत प्राइम मिनिस्टर नरमु नरेंद्र मोदी मु मलोग यिर नालो वेटनेस दोग इटली लो पुइलिक दगला इंडिया ओक इटली कंट्री अन्य काकेन रूब कुई कदन ब यरिक दूर हित्ता दा कुन्नक अमला अदिन हेन पान नारुग दुंबालो मेंकेन जिका एक्सिन इटली कंट्री का कैपिटल रोम लो ओक मु मेंटाला इंडिया ओक इटली देश अन्य अलरून एक्शन प्लान लोग सिन मोगे कुला 2026-29 अरा लो ब यो ब इला सिंह कातम तातम ला ओगो योना अगर अनाक इक मेंक बेदी कना गद्दम सिंह कापता पामरुता दुकु नक अमलासिन कबालो का दूल ना रुगा दम ने अलजाब मेंकेन जिलासिन इगेबा ओक इटली इंडिया अन्य देश अन्य डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप एमसिन पुर्द जाब मोलक जुका अमलासिन उलु उसीब तरक लेकोलासिन इगे कुबा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मु न्यू दिल्ली बोलो मलोग यूरनाल वेटनेस दे ओगो सेंट्रल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी गद्दम ने दुख हिदुकुला दिंस रून कतिक बागो दुख तो एक्सिन नीट यूजी गद गे एग्जाम पोरिका अब हिगिम ने रिब जिदी मोसाकु दे मा योब इ बोलो ब अलदे दा कुना बे अमला अकना रिव्यू कबा ने दुख तो ओगो दिन हेन पन गद अकनक ने मेला हकना कबा ही दुदाकलो मिस इंफॉर्मेशन दियाना एक्सिन कादा कुनक अमला सिन अकनक ने मेंकेन हिस्तु ओक ऑनलाइन ग्रुप लो सिन माजिब मज पाजना एक्सिन याका जागो काका हिदा कुनक अमला मिनिस्टर ने सिन मेंकेन जितु ओगो मुनुक मेन नाम रु अमने मिनिस्टर मे तादु कादु कुला मेला हकना अबा अमने यो ये मुन कुद पेक इंफॉर्मेशन बे जिया दुकना एगम ने अलीब मलेन रू तो का अमला सेंट्रल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी गदम ने तो कब जाबर लसिन इगे कुबा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्टर सुरेश गोपी मु होक पोलोग गाली अलो ट्यूसडे ओगो ईटानगर लोक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट नाम मोंगो हिदु नाम एम ने कासा तो मु अम्ब कासा दागे ओगो यूनियन मिनिस्टर मु सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लोक निगम नित गदम ने ओक MS केंग कंस्ट्रक्शन लोक कॉन्ट्रेक्टर मुन्ना में दुख हिदा कुला योसेब मोदु कुन्ना दे अमला स्टेटस रिपोर्ट्स अबा अबा गदम ने उका उपागम सिन अलजाब इतु ओके मुनु अकेनक ने रिपोर्ट्स एम सिन अलजाब प्रेजेंटेशन जिला कातम लसिन इतु ओके एकने दिन सुरु ने अबा एम ने कागो तागो दागे अलोगो यूनियन मिनिस्टर ग लजुम लागजुन ब अरुणाचल प्रदेश स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना डीसी निगम लोपसंग सिरिंग ओके डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन लोक निगम पर दूध कुने गीजुम तालु ओके कब कब नित निगम नित का दशन अलुब इमिंगला सिन इतु इस्यां डिस्ट्रिक्ट का हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज पासी गातलो दोनी लोगों को ऑयल फार्म ग अब हिगिम ने अलियारु दाग बे योब इबोलो अल्दे दा कुन्ना बे अमला दोलु निर

0: दोस्तों, हमारा खास सुबह का प्रोग्राम सुबह सवेरे, जहां हर सवेरा लेकर आता है एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और सेहतमंद जीवन का संदेश। मैं हूं आपकी आरजे मंज, और अगले कुछ पल हम बात करेंगे योगा, सेहत, व्यायाम यानी एक्सरसाइज और पॉजिटिव लाइफस्टाइल की। तो तैयार हो जाइए एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत के लिए। गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और शुरू करते हैं आज का सफर। लेकिन सफर में सबसे पहला जो कदम है वो है एक प्यारा सा गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, फिल्म कहो ना प्यार है से लकी अली की आवाज में। चलिए सुनते हैं ना तुम जानो ना हम।
1: में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

दोस्तों, कहा जाता है अगर सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सुबह का समय हमारे शरीर और मन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वक्त हवा ताजी होती है, वातावरण शांत होता है और दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। रोज सुबह जल्दी उठने से शरीर एनर्जेटिक रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ 20 से 30 मिनट की मॉर्निंग एक्टिविटी भी हमारे हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव असर डालती है। तो अगर आप अभी तक बिस्तर में हैं, तो धीरे धीरे उठ जाइए, पानी पीजिए और अपने दिन की हेल्दी शुरुआत कीजिए। अब वक्त है योगा के बारे में बात करने का। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है दोस्तों, योगा एक जीवन शैली है। ये शरीर, मन और सांस को एक साथ जोड़ता है। आइए जानते हैं कुछ आसान योगासन जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तदासन की। तदासन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पैरों की उंगलियों पर बैलेंस बनाइए। इससे बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है और बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। दूसरा योगासन है वज्रासन। खाना खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठना डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अब बात करते हैं प्राणायाम की, जैसे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम सांस लेने की एक बहुत ही अच्छी क्रिया है। इससे स्ट्रेस कम होता है, लंग्स स्ट्रांग होते हैं और मन शांत रहता है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे साइकेट्रिस्ट भी, साइकोलॉजिस्ट भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए अनुलोम विलोम, यानी जिसको बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं, सजेस्ट करते हैं। अगर आप एंशियस फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं,

आपको पैनिक हो रहा है तो आप अनुलोम विलोम का सहारा जरूर ले, बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है, आप चार से पांच सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर ले, फिर 3 से 4 सेकंड के लिए उसे रोक के रखिए, जिसके बाद उसे ब्रीद आउट कीजिए। और यही प्रोसेस को आप रिपीट जब करते हैं उसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम। और इससे दोस्तों आपका जो स्ट्रेस है, आप जो एंजाइटी फील कर रहे हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा रिलीफ आप महसूस करेंगे। आप जरूर इसे ट्राई कीजिए, गिव इट अ ट्राई। कभी दिन अगर आप किसी चीज से गुजर रहे हैं, मन बहुत भारी फील कर रहा है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप इसका जरूर उपयोग करें। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। इट हैड मुझे भी पर्सनली काफी हेल्प मिलता है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक से। याद रखिए दोस्तों, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। हम आगे और बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, लेकिन उस बीच आपको एक और प्यारा सा गीत सुना देते हैं। चलिए सुनते हैं फिल्म स्वदेश से AR रहमान, जावेद अख्तर का लिखा हुआ यू ही चला चल गाड़ी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों चलिए अब बात करते हैं रोजमर्रा की सेहत की। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतें ही हमें तंदुरुस्त बनाती है। जैसे कि पानी ज्यादा पीना, दिन भर में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीजिए। ब्रेकफास्ट स्किप मत कीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट बॉडी को एनर्जी देता है। मोबाइल का कम इस्तेमाल कीजिए, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत कम कीजिए। सीजनल फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स इम्यूनिटी बढ़ाती है। कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए और अपनी नींद जरूर पूरी कीजिए। दोस्तों सेहत एक धन है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन अच्छी सेहत नहीं। अब बात करते हैं मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज की। रोज सुबह 20 मिनट चलना हार्ट को हेल्दी रखता है, वेट कंट्रोल करता है और मूड फ्रेश बनाता है। अगर आप जिम नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, घर पर ही हल्का एक्सरसाइज करिए। कुछ सिंपल एक्सरसाइज जैसे कि नेक रोटेशन, शोल्डर मूवमेंट और स्ट्रेचिंग और हल्का जॉगिंग भी बहुत फायदेमंद है। दोस्तों हर सुबह एक नया मौका होती है खुद को बेहतर बनाने का, और ये अब आपके ऊपर है कि आप इसका फायदा कैसे उठाते हैं। सिर्फ शारीरिक सेहत ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और टेंशन आम बात हो गई है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन कीजिए, नेगेटिव सोच से दूर रहिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताइए, म्यूजिक सुनिए और सबसे जरूरी खुद से प्यार कीजिए। जीवन में मुश्किलें आती रहती है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच हर मुश्किल को आसान बना देती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम सुबह सवेरे यही समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम आपातानी भाषा में समाचार।

दोस्तों वक्त है मॉर्निंग इंफरटेनमेंट प्रोग्राम में न्यूज बुलेटिन यानी कि हमारे लोकल डेलीज में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देने का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पॉजिटिव न्यूज के साथ। अरुणाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। ईटानगर से मिली खबर की के अनुसार अरुणाचल की बेटी रूपा बायोर ने मंगोलिया के उलानबतर में हुए एशियन टेक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि के साथ ही रूपा बायोर 2026 एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली खिलाड़ी बन गई है। सबसे खास बात यह है कि वो एशियन टेक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप्स में लगातार दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। दोस्तों रूपा की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। अरुणाचल के सिप्पी गांव से आने वाली रूपा ने बहुत संघर्ष भरी जिंदगी देखी। उनकी परवरिश उनके विधवा मां ने की और बचपन में वो खेतों में काम भी करती थी। आज उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी रूपा को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता अरुणाचल प्रदेश के लिए गौरव का पल है। हमारी तरफ से भी रूपा बायोर को बहुत बहुत बधाई और एशियन गेम्स के लिए शुभकामनाएं। अब एक ऐसी खबर जो इंसानियत और हिम्मत की मिसाल पेश करती है। तावांग के बुमला पास में एक टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर ने एक महिला पर्यटक की जान बचाकर सबका दिल जीत लिया। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड आर्मी जवान और टैक्सी ड्राइवर उर्गेन नोरबू कुछ टूरिस्ट को बुमला पास ले गए थे जो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां पहुंचने के बाद वेस्ट बंगाल से आई एक महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। नोरबू ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और टूरिस्ट को नीचे लौटने की सलाह दी, लेकिन कुछ समय बाद महिला की तबीयत और बिगड़ गई और वो गाड़ी में बेहोश हो गई। आर्मी का अनुभव काम आया और उर्गेन नोरबू ने तुरंत CPR देकर महिला की जान बचाई। दोस्तों इस तरह की घटना हमें ये सिखाती है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में सावधानी बहुत जरूरी है। साथ ही उर्गेन नोरबू जैसे लोग हमें इंसानियत और फर्ज की असली मिसाल दिखाती है। स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और खुशखबरी। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित फोर्थ कूडो नेशनल चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मेडल्स जीते हैं। राज्य ने 2 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं हुई ताजुम और यापी पाक्सोक। वही ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों में शामिल है तामलापांग, तारक दोलूबाई, गी दोके और ताबित तागु। अरुणाचल के इन सभी खिलाड़ियों को हमारे तरफ से ढेर सारी बधाई। अब संस्कृति और साहित्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर। अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने वर्ष 2026 का ल्यूमिनस लुमरडाई लिटरेरी अवार्ड प्रसिद्ध साहित्यकार तोनी कोयू को देने का फैसला किया है। तोनी कोयू को अरुणाचल प्रदेश में भाषा और साहित्य के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों तोनी कोयू ने तानी लिपि के का आविष्कार किया जो तानी ट्राइब्स की पहली इंडिजिनस स्क्रिप्ट मानी जाती है। उन्होंने गालो भाषा में कई रचनाएं लिखी और हिंदी और इंग्लिश में भी योगदान दिया है। ये सम्मान 1 जून को लुमरदाई जी के 87th जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। तोनी कोयू को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास और प्रेरणादायक खबरें अरुणाचल प्रदेश से। याद रखिए हर दिन कुछ नया सीखने और दूसरों से प्रेरणा लेने का मौका देता है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे मॉर्निंग एंटरटेनमेंट के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ शेयर करते हैं डेली न्यूज के साथ ही
टुडे इन हिस्ट्री के बारे में, यानी आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले कि हम उस सेगमेंट में जाएं, आपको एक और प्यारे से गीत सुनाना चाहते हैं, फिल्म बैंड बाजा बारात से। चलिए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में आधा इश्क।

0: दोस्तों, अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट आज के दिन इतिहास में का, जहां हम जानेंगे 21 मई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्ने। आज ही के दिन साल 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक सुसाइड बॉम्ब हमले में हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी से उस समय चुनावी प्रचार कर रहे थे जब एक महिला हमलावर, जो श्रीलंकन मिलिटेंट संगठन LTTE से जुड़ी मानी गई, उनके पास पहुंची और ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में राजीव गांधी समेत कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। ये भारत के इतिहास की सबसे दुखद राजनीतिक घटनाओं में से एक मानी जाती है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1984 से 1989 तक देश का नेतृत्व किया। आज के दिन साल 1932 में अमेलिया हर्ट अटलांटिक महासागर को सोलो नॉनस्टॉप फ्लाइट में पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। उनकी ये उपलब्धि एविएशन इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है और उन्होंने दुनिया भर की महिलाओं को नए सपने देखने की प्रेरणा दी। आज के दिन 1904 में दुनिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा की स्थापना हुई थी। आज फीफा पूरी दुनिया में फुटबॉल टूर्नामेंट्स और वर्ल्ड कप का आयोजन करता है और फुटबॉल को ग्लोबल लेवल पर बढ़ावा देता है। साल 1927 में आज ही के दिन अमेरिकन एविएटर चार्ल्स लिंडबर्ग ने न्यूयॉर्क से पेरिस तक पहली नॉनस्टॉप सोलो ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट सफलता से पूरी की थी। उन्होंने लगभग 33 घंटे तक स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस नामक एयरक्राफ्ट उड़ाकर एविएशन दुनिया में इतिहास रच दिया। आज के दिन 1881 में क्लेरा बार्टन ने अमेरिकन रेड क्रॉस की स्थापना की थी। ये संस्था आज भी डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। और दोस्तों, दिस एक दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट। 21 मई 1908 को अमेरिका की पहली हॉरर फिल्म डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड रिलीज हुई थी। ये मशहूर नॉवल पर आधारित एक साइलेंट फिल्म थी जिसे उस दौर में थ्रिलिंग और मार्वलस कहा गया था। आज के दिन जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल है गोथे, मशहूर सिंगर सॉन्गराइटर, मैल्कम फ्रेसर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री, और एंड्रो साखरोफ प्रसिद्ध साइंटिस्ट और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। तो दोस्तों, ये थी आज की 21 मई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन सरुंगुल तागिन प्रोग्राम मखोगिले युनिंगा बेंथाम गेनसी राजीव राय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड रिन्यूअल रिनोन एक्टर सुरेश गोपी मयो ईटानगर के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कैंपस अंकरला काकर गन कुबेलाफादुकु सौग टूर अंकर कुनाम सी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स दोंगनाम ओक इंस्टीट्यूट लॉ पेंडिंग फैनम काम काज रितों रेंगो दोंगनाम ददंगा अंकरला काकर गन कुबेलाफादुकु सौग इंस्पेक्शन nga angkar dokula union minister nimi central public works department ok official dadangala ms kenge construction nga karuksula ongoing projects dadag status foilelo gama nga teuka pak minsla kula diganyu kubala mifaduku union minister ni lekin guba arnachal pradesh ge education minister p d sonal ला डिप्टी कमिश्नर लोबसांग सेरिंगला इंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर गिजम तालीला कईकई निदंग अंगबामगन कुबेला बेफादकु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मयो बेफाकुनाम इंडिया ला इटली बनी bilateral relationship pale sam ale yasin special strategic relation partnership sam ala dong ba ribam sang bam dukubela gamanga tulik mis pa kunala me faduku so ko dong rek lo rom lo delegation level talks dong pam nga india ngala italy nga mani joint strategic action plan 2025-26 loka 2029 anyang tulko ba ribam sang bam duba tulik mis kunam nga kela me faduku so ko dong pam so bile

नमस्कार दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं सदाबहार, जहां

लगभग 33 यानी 33 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम टेम्परेचर है 23 यानी 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस वक्त सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से महसूस हो रहा है 34 डिग्री के आसपास। हवा पूरब दिशा से लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से की रफ्तार से चल रही है और एयर क्वालिटी फिलहाल ठीक मानी जा रही है। अगले कुछ दिनों में बारिश बदलने के आसार है, विशेषकर फ्राइडे रात से मंडे तक कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, छाता साथ रखिए और सफर करते वक्त सावधानी जरूर बनाइए। दोस्तों, मौसम सिर्फ तापमान और बारिश का नाम नहीं, ये प्रकृति का एक सुंदर संदेश भी है। कभी हल्की हवा, कभी बारिश की बूंदें, कभी पहाड़ों पर बादलों का छा जाना, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति के कितने करीब हैं। आगे हम बात करेंगे नेचर एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक और प्यारा सा गीत मैं सुनाना चाहती हूँ। चलिए सुनते हैं। आतिफ असलम की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गीत।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेचर एनवायरनमेंट के बारे में। कभी हल्की हवा, कभी बारिश की बूंदें, कभी पहाड़ों पर बादलों का छा जाना, ये सब हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के कितने करीब हैं। लेकिन आज इंसान की बढ़ती जरूरतें और लालच प्रकृति को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। पेड़ कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही है और मौसम का संतुलन भी बदल रहा है। कभी तेज गर्मी, कभी अचानक से बारिश, कभी लैंडस्लाइड, कभी तूफान, या ये सब नेचर के बदलते रूप की तरफ इशारे करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रकृति का सम्मान करें। एक पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और अपने आसपास सफाई रखिए, क्योंकि प्रकृति हमारी जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन इंसान का लालच कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, साफ हवा, पानी, भोजन और जीवन। लेकिन जब इंसान जरूरत से ज्यादा प्रकृति में हस्तक्षेप करता है, तो तब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। जब हम बिना सोचे समझे पेड़ काटते हैं, फैक्ट्रीज और व्हीकल से पोल्यूशन बढ़ाते हैं, रिवर्स और लेक्स को गंदा करते हैं, या प्लास्टिक और वेस्ट को एनवायरमेंट में फेंकते हैं, तो इसका सीधा सीधा असर क्लाइमेट, बायोडायवर्सिटी और हम पर पड़ता है। आज दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वाइल्ड लाइफ खतरे में है और बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अब सवाल उठता है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? सिंपल शब्दों में, हम जो एक्टिविटीज रोज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज करना, गाड़ी चलाना, एसी चलाना, प्लास्टिक यूज करना, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में जाती है। इन गैसेस की वजह से धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। इसी टोटल पोल्यूशन को हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। हर इंसान का कार्बन फुटप्रिंट होता है। जितना ज्यादा फ्यूल और रिसोर्सेस का इस्तेमाल होगा, उतना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों, कि हम छोटे छोटे कदम लेकर अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ लगाने से, एक पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, वो एनवायरमेंट को कूल करता है, कार्बन को लेता है, कार्बन का यूज होता है। बिजली बचाने से, जरूरत ना हो तो लाइट्स और फैंस बंद रखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, कार शेयरिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग से पॉल्यूशन कम होता है। प्लास्टिक कम करना, क्लॉथ बैग्स और रीयूजेबल बॉटल्स का इस्तेमाल करना। पानी की हर बूंद कीमती है।

0: है तो वाटर कंजर्वेशन करना, वेट और ड्राई वेस्ट को सेपरेट करना रिसाइकलिंग में मदद करता है। दोस्तों, एनवायरनमेंट बचाने के लिए बड़े स्पीचेस नहीं, छोटी रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स की जरूरत होती है। हम नेचर से अलग नहीं है, हम नेचर का हिस्सा है। नेचर के साथ जीने का मतलब है जरूरत भर लेना, बेकार चीजों का वेस्ट ना करना और हर जीव का सम्मान करना। सुबह की ताजी हवा में चलना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, पहाड़ों, नदियों और जंगलों को साफ रखना, ये सब हमें नेचर के करीब लाता है। आज की फास्ट लाइफ में हम कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स के बीच नेचर से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो स्ट्रेस कम होता है, मन शांत रहता है और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ता है। एक पुरानी कहावत है, धरती हमें विरासत में नहीं मिली, हमने इसे अपने अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखें। तो दोस्तों, आइए एक संकल्प ले, एक पेड़ जरूर लगाएंगे, प्लास्टिक कम करेंगे और नेचर का सम्मान करेंगे, क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। दोस्तों, आने वाली जून 5 तारीख को हम पूरा दुनिया मिलकर मना रहा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। उस दिन आप अपने आप में एक संकल्प ले सकते हैं एक पेड़ लगाने का, कहीं भी आपके घर पर, कहीं स्कूल पे, कोई रोड पे, कहीं पे भी आप एक पेड़ लगाइए जरूर। प्रकृति से जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, ये थी आज की सदाबहार का कार्यक्रम। अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए।
1: एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
8: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में भी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
2: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
9: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
2: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4th और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
10: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के पांच देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश है और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी, चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
11: मोर फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
4: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो ईटानगर। मैं हूं आपकी आरजे मांज। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बहुत कुछ सीखते हैं, कभी अपने अनुभवों से तो कभी दूसरों की कहानियों से। कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये हमें जीने के तरीके सिखाते हैं। कभी रिश्तों की अहमियत बताती है, कभी सोच की ताकत तो कभी अंदर की शांति का सच। आज हम लेकर आए हैं कुछ छोटी लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानियां, जिनमें छुपी है जीवन की गहरी सीख। तो चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा सा मुस्कुराइए, अपने मन को शांत कीजिए और सुनिए हेलो ईटानगर में स्टोरी टाइम। हमारी पहली कहानी है दोस्तों, जब धन भी सुकून ना दे सका। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली खुशी पैसों में नहीं, मन की शांति में होती है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानियां शुरू करें, आपको सुनाते हैं चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म द स्काई इज पिंक से, दिल ही तो है।

दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर जिंदगी में बहुत पैसा आ जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या सच में धन ही सुख

सकता है। अब तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। वो आदमी बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसने बहुत सारा सोना बना लिया। अब उसके पास महल था, नौकर थे, धन दौलत थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो परेशान रहने लगा। अब उसे डर सताने लगा, कहीं चोर मेरा सोना न चुरा ले, कहीं राजा मेरा धन न ले ले। उसकी नींद उड़ गई, दिल से सुकून चला गया। एक दिन वो फिर संत के पास पहुंचा। महाराज, वो बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, तो पारस मणि मुझे वापस दे दो। आदमी घबरा गया, नहीं महाराज, मैं दोबारा गरीब नहीं बनना चाहता। मुझे ऐसा सुख बताइए जो धन और गरीबी दोनों में बना रहे। संत शांत स्वर में बोले, सच्चा सुख सिर्फ निष्काम भक्ति और संतोष में है। जहां स्वार्थ होता है वहां दुख जरूर आता है। दोस्तों, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, अंदर की शांति में होती है। इंसान की खुशी उसकी सोच और संतोष पर निर्भर करती है, सिर्फ पैसों पर नहीं। चलिए दोस्तों, आगे हम और आपको सुनाएंगे कहानियां, लेकिन बीच में लेंगे एक बहुत ही प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। चलिए सुनते हैं फिल्म रुस्तम से तेरे संग यारा।

दोस्तों चलिए अब सुनते हैं एक कहानी परिवार और रिश्तों की। कहानी का नाम है टूटी हुई थाली। गांव के बीच एक बड़ा सा घर था। आंगन में एक आम का पेड़ और उसके नीचे एक पुरानी कुर्सी। उस घर में रहते थे राम स्वरूप जी और उनके तीन बेटे मोहन, सोहन और गोपाल। कभी ये घर हंसी खुशी से भरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे।

कभी रसोई के खर्च पर बहस, कभी खेती को लेकर विवाद। एक दिन बड़े बेटे मोहन ने कहा, बाबा अब साथ रहना मुश्किल हो गया है, हमें अलग हो जाना चाहिए। बाकी दोनों भाइयों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। रामस्वरूप जी चुपचाप सब सुनते रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक आखिरी बात मानोगे? तीनों मान गए। रामस्वरूप जी रसोई से तीन पुरानी पीतल की थालियां लाए और बोले, इन्हें तोड़ दो। तीनों ने आसानी से थालियां तोड़ दी। फिर पिताजी बोले, अब इन्हें वापस पहले जैसा जोड़ दो। तीनों ने बहुत कोशिश की, किसी ने धागा लगाया, किसी ने मोम से चिपकाया, लेकिन थालियां पहले जैसे कभी नहीं बन पाई। तब रामस्वरूप जी ने गहरी सांस लेकर कहा, परिवार भी इस थाली की तरह होता है, जब तक जुड़ा रहता है उसकी कीमत होती है, लेकिन एक बार टूट जाए तो निशान हमेशा रहता है। तीनों बेटों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पिता से माफी मांगी और कहा, बाबा अब हम कभी रिश्तों को टूटने नहीं देंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी है दोस्तों कि मतभेद हो सकता है, लेकिन रिश्तों को कभी टूटने मत दीजिए। आया ना मजा? आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी सीरीज अच्छा लग रहा हो, क्योंकि एक और आखिरी कहानी है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज के हेलो ईटानगर के कार्यक्रम में, और कहानी का नाम है राजा और चंदन बेचने वाला। दोस्तों हमारी सोच का असर सिर्फ हम पर नहीं दूसरों पर भी पड़ता है, इसी बात को समझते हैं चलिए ये कहानी से। एक राजा अपने हाथी पर बैठकर राज्य का दौरा कर रहा था। अचानक एक चंदन की दुकान के सामने रुककर बोला, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन मन करता है कि इस दुकान के मालिक को सजा दे दूं। मंत्री हैरान रह गए। अगले दिन वो आम आदमी बनकर उस दुकान पर गया और दुकानदार से बात की। दुकानदार उदास था। वो बोला, मेरा व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा, अब तो बस एक ही उम्मीद है कि राजा की मृत्यु हो जाए ताकि अंतिम संस्कार के लिए बहुत सारा चंदन बिके। मंत्री समझ गया, दुकानदार के मन की नकारात्मक सोच ही राजा तक पहुंच गई थी। मंत्री ने चुपचाप उसे कुछ चंदन खरीदे और महल ले गया। जब राजा ने सुगंधित चंदन देखा वो बहुत खुश हुआ और दुकानदार को सोने के सिक्के भेज दिए। सिक्के देखकर दुकानदार का दिल बदल गया। उसने सोचा, जिस राजा के लिए मैंने बुरा सोचा उसने ही मेरी मदद की। उस दिन से उसकी सोच बदल गई। तो दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जैसे विचार हम दूसरों के लिए रखते हैं वैसे ही विचार और परिणाम लौट कर हमारे पास आता है। तो इसीलिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, खुद के लिए भी अच्छा सोचिए और अच्छा होगा आपके साथ। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रेरणादायक कहानियां। जिंदगी की असली सीख अक्सर छोटी छोटी कहानियों में छुपी होती है। आप सुन रहे थे हेलो ईटानगर का कार्यक्रम, मैं हूं आपकी आरजे मंज। मुस्कुराते रहिए, अच्छी सोच रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अब दोस्तों हेलो ईटानगर के इस कार्यक्रम में चलिए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म थ्री इडियट से सुनेंगे ऑल इज वेल। मैं आपको बता दूं कि इस गीत के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए, जिसके बाद दोस्तों हम फिर मिलेंगे फिल्मी गपशप के कार्यक्रम में। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: दिल पे रख के हाथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनः मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और कई खबरों के बाद 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस

विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार है। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।
1: दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम हो।
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम फिल्मी गपशप का। मैं हूँ आपकी आरजे मंच। आज का हमारा सफर होगा बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म मेकर के नाम जिनकी फिल्में सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। एक ऐसा डायरेक्टर जिन्होंने सिनेमा को एक पेंटिंग की तरह सजाया, जहाँ हर फ्रेम एक कला का नमूना लगता है, जहाँ रोशनी, रंग, इमोशंस और म्यूजिक मिलकर एक जादू पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की, और आज के इस खास एडिशन में हम लेकर आए हैं फिल्म गुजारिश का एक सोलफुल और टाइमलेस गानों का एक नॉन स्टॉप म्यूजिकल रिले। दोस्तों संजय लीला भंसाली का नाम आते ही याद आते हैं वो ग्रैंड सेट्स, रॉयल विजुअल्स, गहरे इमोशंस और दिल को छू लेने वाला म्यूजिक। उनके फिल्म में सिर्फ कहानियां नहीं, वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होती है। चाहे वो हम दिल दे चुके सनम की म्यूजिकल रोमांस हो, या देवदास का शानदार विजुअल पोएट्री, या फिर बाजीराव मस्तानी और पद्मावत की रॉयल ग्रैंड्योर, और हाल ही में नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी भी आप देख सकते हैं। हर फिल्म में भंसाली साहब ने इंडियन आर्ट, कल्चर और म्यूजिक को एक नई पहचान दी है। उनकी फिल्म मेकिंग की सबसे खास बात है डिटेलिंग। हर कॉस्ट्यूम, हर सेट, हर रंग और हर कैमरा एंगल एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। उनकी फिल्में क्लासिकल इंडियन एस्थेटिक्स से इंस्पायर होती है, जहां डांस, पोएट्री, आर्किटेक्चर और म्यूजिक के साथ मिलकर स्क्रीन पर जिंदा हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर सीन एक मूविंग पेंटिंग की तरह हो। लेकिन दोस्तों, अगर संजय लीला भंसाली की फिल्में दिल को छूती है, तो उनका सबसे बड़ा कारण है उनका म्यूजिक। भंसाली सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, एक ब्रिलियंट म्यूजिक कंपोजर भी है। उनकी फिल्में म्यूजिक के बिना अधूरे है। चाहे हम दिल दे चुके सनम का तड़प तड़प हो, या फिर देवदास का डोला रे, लाल इश्क, दीवानी मस्तानी, घूमर, उनके गानों में क्लासिकल इंडियन सुरों की खूबसूरती और सोलफुल मेलोडी का अनोखा संगम मिलता है। और अब बात करते हैं आज की स्पेशल फिल्म गुजारिश की। 2010 में रिलीज हुई ये फिल्म अपनी सेंसिटिविटी, इमोशंस और सोलफुल म्यूजिक के लिए आज भी याद की जाती है। फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन के परफॉर्मेंसेस को बहुत सराहा गया। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, ये जिंदगी, दर्द, प्यार और डिग्निटी पर एक पोएटिक रिफ्लेक्शन थी। फिल्म का म्यूजिक भी उतना ही खूबसूरत था। कंपोजर्स संजय लीला भंसाली और मोंटी शर्मा ने मिलकर एक ऐसा साउंड ट्रैक क्रिएट किया जो रूह को छू लेता है। गाने जैसे गुजारिश, 100 ग्राम जिंदगी, उड़ी और जाने किसके ख्वाब आज भी लिसनर्स के दिल में अपनी खास जगह रखती है। इस एल्बम में स्पेनिश इन्फ्लुएंस, सॉफ्ट ऑर्केस्ट्रेशन और सूफी स्टाइल इमोशंस का बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड सुनने को मिलता है। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है इस म्यूजिकल सफर में डूब जाने का। अपनी चाय या कॉफी के साथ रिलैक्स हो जाइए और महसूस कीजिए संजय लीला भंसाली के सिनेमा और म्यूजिक का जादू। पेश है फिल्म गुजारिश के मेलोडियस गाने का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले, सिर्फ यही फिल्मी गपशप पर, ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर, अरुण FM 103.1 MHz।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप और मैं हूं आपकी आरजे मंश। अभी तक हमने सुना गुजारिश फिल्म का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। तो चलिए अब बात करते हैं उसी फिल्म की जो बॉक्स ऑफिस पर शायद जीत ना सकी लेकिन दिलों में अपनी एक अलग जगह बना दी। अ फिल्म दैट विस्पर्ड इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, अ फिल्म दैट आस्क्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, पेन, डिग्निटी एंड लव। हम बात कर रहे हैं गुजारिश, द हॉन्टिंगली ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ संजय लीला भंसाली। व्हेन गुजारिश रिलीज्ड, दोस्तों लोग कंफ्यूज रह गए। उन्हें पता नहीं चला कि वो क्या फील करे इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म को बनाने में लगा 60 करोड़ बजट थी इस फिल्म की। जब गुजारिश 2000 में रिलीज हुई तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी। फिल्म में लीड रोल में थे ऋतिक रोशन और उनके साथ थी ऐश्वर्या राय बच्चन। दोनों की पेयरिंग पहले भी हिट रही, इसलिए लोगों को लगा एक ग्रैंड रोमांटिक ड्रामा। लेकिन भंसाली ने दिया एक अलग ही सिनेमा, एक स्लो, इमोशनल और फिलोसॉफिकल फिल्म। इथन मस्करहनास का कैरेक्टर जो ऋतिक रोशन ने निभाया, एक मशहूर मैजिशियन होता है लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो क्वाड्रिप्लेगिक हो जाता है, यानी फ्रॉम नेक टू द बॉटम पैरालाइज हो जाते हैं। वो 14 साल से अपनी बेड पर जिंदगी जी रहे होते हैं या शायद सिर्फ सरवाइव कर रहा होता है। वो अपने रेडियो शो रेडियो जिंदगी से लोगों को होप देता है लेकिन खुद अंदर से टूट चुका होता है। और उसकी केयर करने वाली नर्स सोफिया, जिसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्ले किया, उसकी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती है। संजय लीला भंसाली की फिल्म्स हमेशा से ग्रैंड होती है। देवदास, ब्लैक, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, हीरा मंडी जैसे फिल्म सीरीज में उन्होंने सिनेमा को एक पेंटिंग बना दिया। लेकिन गुजारिश में ग्रैंडियर लाउड नहीं था, वो क्वाइट था, सटल था और इमोशनल था। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। कैंडल्स, शैडोज, पुर्तगीज स्टाइल घर, रेन सॉफ्ट विंडोज, सब कुछ एक ड्रीमी वर्ल्ड क्रिएट करता है। फिल्म का म्यूजिक भंसाली ने खुद कंपोज किया था और ये उनका एक नया एक्सपेरिमेंट था। सॉन्ग्स जैसे उड़ी, फ्री और पैशनेट फीलिंग देने वाली, साइबा, सॉफ्ट और रोमांटिक टच, तेरा जिक्र, दर्द और यादों से भरा, 100 ग्राम जिंदगी, जिंदगी की कीमत बताने वाला गीत, ये गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये फील करने के लिए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गुजारिश का बजट अराउंड 65 to 75 करोड़ था लेकिन इंडिया में कलेक्शन सिर्फ अराउंड 30 करोड़ तक ही पहुंच पाया। मतलब फिल्म को हैवी लॉस हुआ, करीब 45 करोड़ का डिफिसिट। लेकिन सवाल ये है, क्या फिल्म खराब थी? नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म अपने टाइम से बहुत आगे थी। यूथनेशिया जैसे सेंसिटिव टॉपिक, स्लो स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ, ये सब मास ऑडियंस के लिए उस वक्त थोड़ा हैवी था। लोग एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे थे, भंसाली ने इंट्रोस्पेक्शन दिया। ऋतिक रोशन एज इथन मस्करहनास रोल आज भी उनके बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। उन्होंने बिना फिजिकल मूवमेंट के सिर्फ अपनी आंखों, आवाज और एक्सप्रेशन से पूरा इमोशन डिलीवर किया। नो डांस, नो एक्शन, सिर्फ दर्द, डिग्निटी और होप, और यही इस रोल को अनफॉरगेटेबल बनाता है। दोस्तों, कुछ फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे जीत जाती है और कुछ फिल्में दिलों में जगह बना लेती है। गुजारिश शायद उस वक्त समझ नहीं गई लेकिन आज भी उसकी खामोशी बोलती है। ये फिल्म सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, ये कहानी है जिंदगी, इज्जत और इंसान की चॉइस की। तो मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखिए। ये फिल्म अवेलेबल है स्ट्रीमिंग साइट्स

खुद से बाथरूम जा सकते हैं, विच इज सो प्राइवेट. ना आप जिंदगी जी सकते हैं, ना आप चल सकते हैं, ना आप दौड़ सकते हैं, ना आप बाहर जा सकते हैं. यू आर टाइड टू अ व्हील चेयर, यू आर टाइड टू योर बेड, बट यू आर स्टिल ब्रीदिंग. इज ब्रीदिंग ऑल दैट लिविंग? क्या सिर्फ सांस लेना जिंदगी है? इसका इंट्रोस्पेक्शन आप कर सकते हैं इस फिल्म को देखकर. मेरी गुजारिश है आपसे दोस्तों कि आप इस फिल्म गुजारिश को जरूर देखिए और हमें बताइए कि आपका क्या ख्याल है यूथनेशिया को लेकर, आपका क्या ख्याल है लाइफ को लेकर. इसी बात पे दोस्तों चलिए अब सुनाते हैं आपको एक और गीत. गुजारिश के अराउंड का ये सेगमेंट खत्म, यही खत्म होता है. चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत. AR रहमान की ये पेशकश है, सुनते हैं चलो चले मितवा.

दोस्तों फिल्मी गपशप में चलिए अब आपको बताते हैं बॉलीवुड की दुनिया में क्या चल रहा है। बॉलीवुड में कुछ कंट्रोवर्शियल, कंफ्यूजिंग, पपराजी इंसिडेंट्स खबरें आए हैं। चलिए बताते हैं आपको एक-एक करके। प्रीतम वर्सेस म्यूजिक डिटेक्टिव्स, माशुका कंट्रोवर्सी, म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती एक नए कंट्रोवर्सी में आ गए हैं अपने लेटेस्ट गाने माशुका को लेकर, जो फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रैक है। इस गाने में शाहिद कपूर और कृति सनोन नजर आते हैं। गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने क्लेम किया कि इसका ट्यून 1993 के एक इटालियन कॉमेडिक सॉन्ग सेसो अरुबाते अनोना से मिलता जुलता है। इस कंपैरिजन के बाद इंटरनेट पर प्लेजरिज्म डिबेट स्टार्ट हो गई। प्रीतम ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर रिप्लाई दिया और कहा कि हर बार उनके सॉन्ग्स के साथ सेल्फ अपॉइंटेड म्यूजिक डिटेक्टिव्स आ जाते हैं जो बस इमेजिनरी सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेम लोग हर बार इंस्पायर्ड बाय वाली थ्योरी ले आते हैं। उन्होंने सरकाजम में ये तक बोल दिया कि ये लोग उनके अनपेड पीआर टीम बन गए हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रीतम ने प्लेजरिज्म एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और कहा कि सिमिलैरिटीज एग्जैजरेट कर रही है। फिल्म धुरंधर को लेकर भी काफी कंफ्यूजन चल रहा है। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है कि फिल्म का एक रो एंड अनदेखा एक्सटेंडेड वर्जन रिलीज होगा जिसमें एक्स्ट्रा अनसीन फुटेज होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस एक्साइटेड भी है और कंफ्यूज भी, क्योंकि फिल्म का ओरिजिनल थिएटरिकल वर्जन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अब एक एक्सटेंडेड ओटीटी कट आने वाला है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट वर्जन की बात हो रही है। इस वजह से ऑडियंस समझ नहीं पा रही कि कौन सा वर्जन कब और कहाँ मिलेगा। सोशल मीडिया रिएक्शंस मिक्स्ड है। कुछ लोग कह रहे हैं एक्स्ट्रा सीन्स इंटरेस्टिंग होगा, तो कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को कंफ्यूजिंग बता रहे हैं। अब बात करते हैं द किंग द सलमान खान और पपराजी कंट्रोवर्सी। एक्टर सलमान खान का रिसेंट हॉस्पिटल विजिट के टाइम पापराजी के साथ एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था। फोटोग्राफर्स उनको फॉलो कर रहे थे और सिचुएशन को रिकॉर्ड कर रहे थे, जिस पर सलमान गुस्से में आ गए और उनसे बहस हो गई। उन्होंने बाद में इंस्टाग्राम पर भी रिएक्शन दिया था, जहां उन्होंने मीडिया के बिहेवियर पर डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया। लेकिन नेक्स्ट डे एक पब्लिक इवेंट में सिचुएशन चेंज हो गई। जब सलमान राजा शिवाजी सक्सेस बैश में आए तो फोटोग्राफर्स ने उनसे अपोलॉजी मांगी। इस बार सलमान ने कामली रिएक्शन दिया। उन्होंने अपोलॉजी एक्सेप्ट की और इवन लाइट मूड में जोक्स भी किए। उन्होंने कहा कि सब ठीक है और सिचुएशन को पीसफुली क्लोज कर दिया। सिंपल वर्ड्स में पहले कंफ्लिक्ट हुआ, फिर नेक्स्ट डे रिकंसिलिएशन भी हो गया। आज की बॉलीवुड न्यूज का ओवरऑल सीन कुछ ऐसा है। म्यूजिक इंडस्ट्री में प्लेजरिज्म वर्सेस क्रिएटिविटी डिबेट चल रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म के मल्टीपल वर्जन्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और स्टार्स अपनी पब्लिक इमेज और मीडिया इंटरेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, कभी स्ट्रिक्ट से कभी फ्रेंडली। तो दोस्तों हमारे फिल्मी गपशप में आज के लिए बस इतना ही। हमने सुना फिल्म

0: बारिश का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले, फिर बात की इसी फिल्म के बारे में, क्यों फ्लॉप हुई एंड व्हाई इट वाज अ क्रिटिकल हिट बट बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं कर पाई, व्हाई यू शुड गो वॉच दिस फिल्म अगेन। मैं एक और बार आपसे फरमाइश कर रही हूँ कि आप जरूर इस फिल्म को देखें और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको। टाइम से बहुत पहले था, 2010 की ये बात है, आज 16 साल हो गए हैं इस फिल्म को, जरूर आपको पसंद आएगी। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। फिर हमने बात की कंट्रोवर्सीज के बारे में, प्लेजरिज्म्स के बारे में, तो यही सब था आज के फिल्मी गपशप में। दोस्तों अब वक्त है समाचार का, अब आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार के लिए, जिसके बाद हम फिर मुलाकात करेंगे आपका पसंदीदा रेडियो ऑन डिमांड पर, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक, वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सोलहवीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल चार बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड वो कार्यक्रम है जहां माइक तो हमारे पास है, स्टूडियो पर हम बैठे हैं, लेकिन गीत बजेगा आपका, डिमांड पूरा होगा आपका। जी हां, आप किस गीत को सुनना चाहते हैं वही गीत हम पेश करेंगे हमारे रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम में। आप हमें अपना पसंदीदा सॉन्ग, अपना डेडिकेशन लिख भेज सकते हैं इस नंबर पर। दोस्तों, नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9436887808। एक बार फिर से कहती हूँ, नंबर है 9436887808। इस नंबर पर आप हमें अपना फेवरेट सॉन्ग्स भेज सकते हैं, अपने डेडिकेशंस भेज सकते हैं, अपने मैसेजेस इवन भेज सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, किसे कहना चाहते हैं, अगर कोई सीक्रेट मैसेज है जो आप पहुंचाना चाहते हैं किसी को, अपना प्यार बांटना चाहते हैं, किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो रेडियो ऑन डिमांड वो कार्यक्रम है। दोस्तों, जल्दी से फोन उठाइए, हमें लिख भेजिए, मैसेज कीजिए और हम आपके फेवरेट सॉन्ग्स, आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस सारा कुछ लेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए अब बढ़ते हैं और लेते हैं हमारे रेडियो ऑन डिमांड का पहला सॉन्ग रिक्वेस्ट। पहला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है हमें दोस्तों पेंसन क्रो आतुर क्रो सार्लो एक्रो की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं लंकंग सम कार्बियांगलोंग असम से, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है हमें कुमार सानू और साधना सरगम की।

जोड़ी का ये गीत, गीत का नाम है तेरे इस अदा पे फिल्म दीवाना से। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। टेंशन क्रो जी, अतुल क्रो जी, सार्लो एक्रो, आशा करते हैं कि आप ट्यून्ड इन हैं हमारे साथ रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम पर, क्योंकि हम ले रहे हैं आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

दोस्तों रेडियो ऑन डिमांड पर चलिए लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट ले रहे हैं हम शिवा जेठ जी की तरफ से, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है एक सैड लव सॉन्ग। शिवा जेठ जी, मुझे पता नहीं आप किस चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कभी कभी सैड लव सॉन्ग रिक्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप टूट गए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप टूटे नहीं हैं। बस इतना होता होगा कि कुछ फीलिंग्स अभी तक दिल में रह गई है और म्यूजिक ही एक जगह है जहाँ वो सेफली बाहर आ सकती है। पर एक बात याद रखिए, जो प्यार आज दर्द बन के लग रहा है वो हमेशा वैसा नहीं रहेगा। आज जो याद हैवी लग रही है, कल वही याद एक नॉर्मल सी कहानी बन जाएगी, ना इतना दर्द देगी ना इतना कंट्रोल करेगी। जैसा वो कहते हैं ना कि दिस टू शैल पास, तो हर एंडिंग का मतलब लॉस नहीं, कभी कभी वो सिर्फ एक टर्न है जहां से आप अपने आप को थोड़ा बेहतर समझने लगते हो। तो इस गाने को जो गीत मैं आपके लिए बजाने जा रही हूं, आपने रिक्वेस्ट किया उसको अपनी बात कहने दो, पर अपने आप को इस फीलिंग में अटका के मत रखिए। दोस्तों शिवा जेठ जी के लिए जो सॉन्ग मैं प्ले करने जा रही हूँ, उस गीत का नाम है मनचला, फिल्म हसी तो फसी से। वो गाना सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक इमोशन है जो क्वाइटली दिल को अंदर से तोड़ देता है। जब आप किसी को इतना प्यार करते हो कि उनकी खुशी ही आपकी प्रायोरिटी बन जाती है, और फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उन्हें रोक भी नहीं सकते, सिर्फ दूर जाते हुए देखना पड़ जाता है, तब मनचला जैसे गाने बस उसी फीलिंग को आवाज देती है जो शब्दों में कहना मुश्किल होता है। ये वो प्यार है जो सेल्फिश नहीं है, पर सबसे ज्यादा दर्द भी वही देता है, क्योंकि यहाँ मिला नहीं से ज्यादा पेनफुल होता है, छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो प्यार इतना गहरा होता है ना, वो खत्म नहीं होता, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। कभी याद बन जाता है, कभी रेस्पेक्ट, कभी एक सॉफ्ट स्माइल जब वो इंसान याद आए। और जो तुम आज फील कर रहे हो वही प्रूफ है कि तुमने सच में प्यार किया है, हाफ हार्टेडली नहीं, फुल्ली। तो चलिए सुनते हैं फिल्म हसी तो फसी का मन चला, उस प्यार के नाम जो अभी अधूरा रह गया है।

तो दोस्तों ये था शिवाजीत की तरफ से सॉन्ग रिक्वेस्ट, एक सैड लव सॉन्ग का। शिवाजीत जी आशा करते हैं कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। चलिए अब लेते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट, और अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट काफी मिस्टीरियस है क्योंकि हमें एक एनोनिमस सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है और वो सुनना चाहते हैं थिंकिंग ऑफ यू, और उस उन्होंने इस सॉन्ग को डेडिकेट किया है अपने लवर को। उन्होंने नाम नहीं बताया, ना तो खुद का नाम बताया और ना ही अपने लवर का। सो टोटली इट्स अ मिस्ट्री कि कौन लिख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स तो दोस्तों सॉन्ग रिक्वेस्ट है पता चल ही गया। एपी ढिल्लों की आवाज में सुनना चाहते हैं थिंकिंग ऑफ यू, यानी वो उन्हें सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। काफी रोमांटिक सा ये गीत है। आई एग्री, मुझे काफी पसंद है ये गीत। तो आशा करती हैं दोस्तों कि आप सभी को भी पसंद आएगा। और जी हाँ, आप हमें ऐसे एनोनिमस मैसेजेस भी भेज सकते हैं, एनोनिमस डेडिकेशंस भी भेज सकते हैं, हम जरूर उसे भी फुलफिल करते हैं, लेते हैं बिना किसी भेदभाव के दोस्तों। तो बिना घबराए आप हमें तुरंत मैसेज कीजिए। नंबर मैं बताती हूँ आपको, नंबर है 9436887808। अभी भी वक्त है, 11 बजे तक ये सिलसिला चलेगा रेडियो ऑन डिमांड का। तो आधा घंटा और है हमारे पास, आप जल्दी तुरंत ही हमें मैसेज कीजिए और मैं लूंगी आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो चलिए फिलहाल के लिए ये एनोनिमस सा सॉन्ग रिक्वेस्ट लेते हैं, एपी ढिल्लों की आवाज में सुनते हैं थिंकिंग ऑफ यू।

दोस्तों, एपी ढिल्लों इस गीत में बोल रहा है कि तुम्हारे बारे में मैं हर जगह सोचता हूँ। नदी के किनारे, लोगों के सामने, हर किसी, हर जगह, हर जगह। बस तुम ही मेरे दिमाग में रहते हो, तुम ही मेरे दिल में रहते हो। तो शायद हमारे एनोनिमस मैसेंजर भी कह रहे हैं कि वो अपने लवर को हर जगह सोचते हैं, और ये काफी रोमांटिक है। मुझे काफी पसंद है, मुझे रोमांस बहुत पसंद है। आई लव रोमांस मूवीज, आई लव रोमांस बुक्स, एंड आई लव सीइंग रोमांस, आई लव सीइंग लव इन द एयर। तो मेरे लिए ये काफी मजेदार सा रिक्वेस्ट था। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर रिक्वेस्ट। आगे भी आप हमें ऐसे मैसेजेस भेजते रहिए, ऐसे सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते रहिए, क्योंकि बड़ा मजा आता है बैठ के किसी के प्यार के बारे में सोचने को। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला रिक्वेस्ट। अगला रिक्वेस्ट हमें आया है, सुनना चाहते हैं फिल्म रोडाली का गीत दिल हुम हुम करे। और ये मैसेज हमें आया है जोगेंद्र रोंगपी, धोरोमगिरी रोंगपी, सोनाली इंकिपी से, जो कि लिख रहे हैं सरिहाजन कार्बी आंगलोंग आसाम से। और बहुत ही दूर से ये रिक्वेस्ट आया है और डेडिकेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स अमल बस

सुमत्री, भाईकोन मुंडा, रमेश पात्र, रुनु पात्र और अरुणाचल प्रदेश के सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सॉन्ग रिक्वेस्ट का। आशा करते हैं कि आप सब भी ठीक है, आप, आपके परिवार, आपके दोस्त, और हमें ऐसे सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। नेबरिंग स्टेट है हमारा असम, और पता चलता है कि काफी प्यार है हमारे लिए भी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के उनके सॉन्ग रिक्वेस्ट ले लेते हैं, और आप भी हमें ऐसे प्यारे रिक्वेस्ट, प्यारे मैसेजेस भेज सकते हैं हमारे रेडियो ऑन डिमांड के इस कार्यक्रम में। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं फिल्म रुदाली से दिल हूम हूम करे।

0: यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 700-5760-1155 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(b) के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार ईटानगर के वासी,
1: love my eco cause it's got more power
2: and it also comes with all new safety features.
3: We love our eco cause we can bring all our friends.
4: We love our eco cause it's made every journey special.
5: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The eco family is growing. Get attractive offers up to rupees 37,500.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें दोस्तों आप अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं, डेडिकेशंस भेज सकते हैं, मैसेजेस हमें भेज सकते हैं और हम उन्हें फुलफिल करते हैं हमारे इस कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सुनते हैं अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट। अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें आया है जाफो पोहम जी की तरफ से, लिख रहे हैं सेनवा विलेज लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से अरुणाचल प्रदेश में, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है फिल्म सलामी का, जो कि रिलीज हुई थी 1994 को, कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज में, चेहरा क्या देखते हो। तो जाफू जी, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz को, क्योंकि हम आपका सॉन्ग रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहे हैं अभी इसी वक्त। दोस्तों, अगर आप भी हमें जाफू जी की तरह मैसेज भेजना चाहते हैं तो नंबर है 9436887808। तुरंत ही मैसेज कीजिए और हम प्ले करेंगे आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट यही इसी रेडियो ऑन डिमांड के कार्यक्रम में। तो चलिए सुनते हैं अब उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर अगला सॉन्ग रिक्वेस्ट आया है आरफ जी की तरफ से और वो सुनना चाहते हैं फिल्म बॉर्डर 2 का गीत संदेश से आती है, तो चलिए उनका सॉन्ग रिक्वेस्ट सुनते हैं।

दोस्तों, इसी के साथ रेडियो ऑन डिमांड का कार्यक्रम बस यहीं तक और आज के इस प्रभातकालीन प्रसारण सभा का ट्रांसमिशन भी दोस्तों यहीं रुक जाता है। आज हमने कुछ गाने सुने, कुछ मोमेंट्स साथ बिताए, कुछ कहानियां सुनी। अगर उसमें से कोई भी चीज आपके दिल को छुआ हो, कोई भी कुछ महसूस हो, इंस्पायर किया हो, तो याद रखिए दोस्तों कि लिसनिंग भी एक आर्ट है, आर्ट को महसूस करना भी एक आर्ट है, एक कला है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। दोस्तों, इसके साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के अंत में। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले एवं तकनीकी अभियंता एम जिर्दो। दोस्तों, अब आपका साथ देने के लिए, आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए स्टूडियो में पहुंच चुके हैं हमारे अगले आरजे, आरजे पूनम। तो मुझे यानी आपकी आरजे साथी बिंदु बिंदु मंच को दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप आगे का दिन एंजॉय करेंगे, गाने सुनते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस प्रसारण के बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने, धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार में 23 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इनमें 3 नई महिला मंत्री भी शामिल हैं। सरकार में पहले से ही 9 मंत्री हैं, जिनमें एक महिला मंत्री सुश्री कीर्तना भी शामिल हैं। अब कैबिनेट में कुल 32 मंत्री हो जाएंगे, जिनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी शामिल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर चेन्नई के लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 600

0: after Iran said it was reviewing latest proposal to end the conflict. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे आपके चहीते आरजे मंच के साथ हमारी पहली प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को। और अब मैं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम आपके लिए लेकर आई हूं बहुत से मजेदार कार्यक्रमों को आपके लिए हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता अमित सक्सेना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है फिल्मी लहर। तो चलिए, इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में, जो लिया गया है एल्बम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए से। इस बेहतरीन गीत का नाम है अयोरामा। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: क्या

श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर का। श्रोतों दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमें जरूर लिख भेजिए, या फिर आप चाहते हैं कि हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरह का सुधार आए, या और एक्साइटमेंट चाहिए, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप लिखकर भेज सकते हैं। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा। आप हमें अपने सुझाव लिखकर भेजें इस नंबर पर 9436887808 पर। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आप हमें जरूर लिखेंगे अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो चलिए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत निबुड़ा का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

श्रोताओं दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर और आप सभी बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाया जाए, आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए इस नंबर पर 9436887808 पर। हम चाहते हैं कि आप हमें जरूर मैसेज कीजिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो हमारी तारीफों के पुल जरूर बांध सकते हैं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें जरूर लिख भेजिए ताकि हम आपके अनुभव को और भी बेहतर बना सकें। जी हाँ श्रोताओं दोस्तों, हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म केदारनाथ से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत काफिराना का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

श्रोताओं दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम पाश्चात्य गीत यानी कि वेस्टर्न मेलोडीज।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने अपनी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत

ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: that we end this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

तो श्रोताओ दोस्तों, अभी आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं सबसे पहला गीत जो गाया है बादशाह और पायल देव ने। गीत के बोल हैं गेंदा फूल। तो चलिए आनंद लेते हैं इस बेहतरीन गीत का अरुण FM 103.1 MHz पर अपनी रेडियो साथी RJ पूनम के साथ।

बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.

श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म नवाबजादे से, हाई रेटेड गबरू। तो चलिए आनंद लेते हैं इस बेहतरीन गीत का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये बेहतरीन गीत नमस्ते इंग्लैंड फिल्म से दिलजीत दोसांझ बादशाह और आस्था गिल की आवाज में। श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रही हैं कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है मेरी आशिकी एल्बम से, जिसे गाया है जुबिन नौटियाल ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ।

श्रोतों दोस्तों, अभी आप आनंद दे रहे थे कार्यक्रम नॉन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्स है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद लेंगे कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों बहनों को समर्पित है।

श्रोतम दोस्तों, चलिए इस बेहतरीन कार्यक्रम जो कि हमारे फौजी भाइयों को समर्पित है, गीतमाला की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में आपको सुनाते हैं सबसे पहला गीत फिल्म वीर जारा से, जिसे गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीथा मजुमदार ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं ऐसा देश है मेरा का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे सभी फौजी भाइयों और श्रोताओं के साथ।

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
0: We love our Eco,
1: cause it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
3: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों को समर्पित है। तो दोस्तों, आज जो मौसम है अरुणाचल में, आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ गई है और हमें परेशानी हो रही है। किसी को फैन की जरूरत है तो किसी को एसी की। लेकिन क्या कभी सोचा है उन वीर जवानों के बारे में जो इस गर्मी में राजस्थान के अंदर उस रेगिस्तान में, जहां 50 डिग्री तक का भी अभी टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट, वहां पर खड़े हैं किस लिए? हम सबकी सुरक्षा के लिए। तो उन ऐसे जवानों के लिए जो गर्मी में, इतनी धूप में भी रेगिस्तान में खड़े रहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहते हैं और सर्दी में, ठिठुरती ठंड में भी, ले लद्दाख हो या तवांग हो, यहां पर खड़े रहते हैं। और इतनी बर्फबारी के अंदर भी वो हमेशा हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। ऐसे ही उन फौजी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से सलाम, और आप सभी श्रोताओं की तरफ से भी मैं उन्हें सलाम और बहुत बहुत धन्यवाद और रिस्पेक्ट देना चाहूंगी। और साथ ही उनको सुनाना चाहूंगी एक और बेहतरीन गीत, जिसे गाया है बी पराग ने, जो लिया गया है फिल्म केसरी से, जिस गाने के बोल हैं तेरी मिट्टी। तो श्रोताओं दोस्तों, और हमारे सभी फौजी भाइयों और बहनों, आप सभी के लिए ये बेहतरीन गीत सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: जामा गुल।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon-R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रही हैं कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, आपको सुनाते हैं एक शायरी जो कि शायद किसी फौजी ने लिखी हो। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बहुत ही बेहतरीन बात कही है। और इसी के साथ आपको इस कार्यक्रम में एक और बेहतरीन गीत सुनाते हैं, जिसे लिया गया है फिल्म एयरलिफ्ट से। गीत के बोल हैं सोच ना सके। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों को समर्पित है। तो दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो लिया गया है फिल्म बॉर्डर 2 से, जिसे गाया है सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत घर कब आओगे का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत माला। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान

0: और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tended record of genocide at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
3: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
2: Defense Minister Rajnath Singh and Minister of Patriots and Veterans Affairs of South Korea Kwon Oh-yul today jointly inaugurated the Indian War Memorial at Imjingak Park in Seoul. Constructed as part of the commemorative events marking the 75th anniversary of the Korean War, the memorial stands as a tribute to the courage, sacrifice and humanitarian service rendered by the 60 para field ambulance of the Indian Army and the custodian force of India during the war. Highlighting the transformative potential of artificial intelligence in reshaping healthcare systems, Union Health Minister Mr. Jagat Prakash Nadda has said, while AI presents immense opportunities for advancing healthcare delivery, it must be shaped by sound regulation, rigorous research and ethical oversight. Mr. Nadda, while addressing an event during the 79th World Health Assembly in Geneva, also said, the country is governing AI for 1.4 billion citizens across 22 official languages and varying levels of healthcare access. The Directorate General of Health Services has issued an advisory regarding Ebola disease for passengers arriving from or transiting through affected countries. According to the advisory, travelers who have visited high-risk countries, including the Democratic Republic of Congo, Uganda and South Sudan, and are experiencing symptoms such as fever, headache, muscle pain, unexplained bleeding and vomiting, have been urged to seek immediate medical attention. The government has said no cosmetic product is permitted to be used as an injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. The Central Drugs Standard Control Organization has said the cosmetics are only intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on the human body. It said the manufacture and import of cosmetics for sale and distribution are regulated under the provisions of the Cosmetics Rules 2020. The West Bengal government has announced that Vande Mataram will now be compulsory as the prayer song in all madrasas. The Madrasa Education Department has issued a directive stating that from now on, students in institutions under the Minority Affairs and Madrasa Education Department must sing Vande Mataram before the start of classes, replacing earlier guidelines and practices. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. And with that, we end this news bulletin.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: चलिए दोस्तों, तो अब समय हो चला है कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। तो चलिए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे आप सभी श्रोताओं की फरमाइश को। तो चलिए आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम का, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
2: श्री बागरा साहब, सादर सप्रेम, प्यार भरा नमस्कार।
1: प्रेम और प्यार भरा नमस्कार आपको भी, और आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी हृदय से धन्यवाद। म्यांमार में आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
1: शारदा प्रसाद, मथुरा से शारदा प्रसाद जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कहिए क्या चल रहा है अभी?
2: मानवर वश आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। आप लोगों से वार्तालाप करना मेरा शौक है और मुझे काफी खुशी प्रसन्नता होती है जब आकाशवाणी ईटानगर में फोन लग जाता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी, आज भी फोन तो लग ही गया।
2: जी,
1: और मौसम का हाल कैसा है आपके वहाँ?
2: मानवर इस वक्त मथुरा वृंदावन में जबरदस्त गर्मी का वातावरण है, चिलचिलाती हुई चमचमाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं और पूरा मथुरा वृंदावन लू की चपेट में है।
1: ओहो, जी जी।
2: क्या है कि यहाँ पर तापमान लगभग 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिन में हो जाता है और रात 30 डिग्री के आसपास रहता है।
1: जी जी जी, बाहर निकलना तो संभव ही नहीं हो पाता होगा तब तो।
2: जी, इस वक्त बाहर निकलना मतलब जान जोखिम में डालने वाली बात है, बहुत ही खतरे की घंटी है। लू का प्रकोप है, लू की चपेट में आने से स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है और लू की चपेट में आने से ना तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिससे कि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए धूप से 11 बजे से लेके शाम को 4-4.5 बजे तक न निकले तो ज्यादा अच्छा है, उसके पश्चात अपना काम कर लें सुबह अथवा शाम को।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो इस पर जरूर अमल करेंगे, हम यही आशा करते हैं।
2: जी, यदि संभव नहीं हो, बहुत जरूरी काम हो तो धूप में निकलने से पहले खूब पानी पी ले, पानी पीने के पश्चात ढीले ढाले कपड़े पहन ले, सूती कपड़े, और सिर को ढक ले, चाहे वो रुमाल से चाहे टोपी से या पगड़ी लगा ले, हेलमेट लगा ले, उसके बाद फिर घर से निकले और समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे कि हमें डिहाइड्रेशन नहीं हो और घर लौटने के पश्चात शरीर का तापमान नॉर्मल होने के पश्चात ही कुछ खा पी के फिर पानी पिए, अन्यथा उसमें भी समस्या उत्पन्न हो सकती
1: जी,
2: है।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब से गर्मी शुरू हुई है तब से आपने अपना यह विचार रखा है रेडियो पर, और हमें लगता है कि हमारे जो श्रोता है जरूर इस पर अमल कर रहे हैं और अपने आप को लू से बचा रहे हैं।
2: जी।
1: तो शारदा प्रसाद जी, कहिए घर बैठे बैठे अब कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
2: बस इस गर्मी भरे वातावरण में यही सबसे कहना चाहता हूँ कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए।
1: जी जी जी जी, वो
2: जी फिल्म पत्नी और तवायफ महेंद्र कपूर साहब।
1: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
2: जी
1: पति
2: गीत आदरणीय बागरा साहब के साथ साथ में याद करना चाहता हूँ सरश्री अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव, राजू लवानिया, राकेश कुमार जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, नाथ जी, और साथ में अर्जुन प्रधान, इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से आर्य भागरा साहब के साथ सभी सम्मानित श्रोताओं को सर्व समर्पित करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी। तो आइए सुनते हैं आपके पसंद का गाना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए।
2: जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम
0: जी।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे जी,
1: है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्या बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है
0: जी,
1: जिसका नाम है बो के बागेरा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी,
1: मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर।
0: हाँ जी,
1: डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, आसाम से तालुका।
0: आसाम से हमारे दोस्त अनूप कुमार भट्टाचार्य। जी जी जी, हाँ।
1: जिंदगी में मुसीबतें तमाम है, फिर भी इस चेहरे पर मुस्कान है। जब जीना ही है हर हाल में, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है?
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात कही। मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और
0: जी
1: बाकायदा आज क्या कहूँ, मतलब बाकायदा नहीं है, एकदम मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा मन में एक सुकून भरे हुए थे,
0: जी हाँ जी,
1: हमारे दोस्त से
0: बातचीत जरूर होगी।
1: बातें हो जाए
0: हाँ जी, हाँ जी
1: और भी बात हो रहा है
0: जी,
1: ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: जी,
0: हाँ जी,
1: तो हमारे वहाँ के मौसम के मिजाज तो थोड़ा
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: नरमी नरम सी हो गए है, क्योंकि 2-3 रोज से बारिश हो रहा है। इतना बारिश जोरदार नहीं है, इतना
0: अच्छा
1: कम नहीं है,
0: अच्छा अच्छा जी जी जी
1: क्या बोलते हैं, ये बारिश टिप टिप टिप टिप करके बारिश हो रहा है। और मौसम भी थोड़ा बहुत क्या कहो, मतलब
0: सुहाना हो
1: ठंडा
0: गया
1: है।
0: है, सुहाना हो गया मौसम
1: और आपके वहाँ के मौसम भी
0: जी।
1: वैसे ही
0: अनुपदा,
1: है
0: हमारे
1: ना?
0: यहाँ पे भी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है
1: जी जी
0: जी, तो ठंडा है अभी, मौसम बहुत ही बढ़िया है।
1: जी जी जी
0: हाँ जी,
1: तो चलिए आज एक प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी।
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, और गाने का बोल ऐसे है।
0: जी
1: अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेगी तो मिल जाएगा, ऐसे करके गाने हैं।
0: जी, खुशियों का पल जरूर आएगा अगर हम ढूंढने की
1: जी
0: कोशिश
1: जी जी
0: करेंगे जी।
1: और
0: हाँ
1: कुछ
0: जी,
1: दोस्त को मैं याद करता
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल जी जी अनुपदा।
1: पहले है हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, जिसका नाम बके बागेरा जी,
0: धन्यवाद जी।
1: और नूरी मैम के
0: हाँ जी,
1: लिए,
0: हाँ जी, नूरी मैम के
1: और
0: लिए भी।
1: है नूरी मैम भी बहुत अच्छी है,
0: जी जी जी जी
1: और बसंतीलाल सूर्यवंशी जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, बापन आचार्य जी है, सिंधु दास जी है, और कश्मीर से हमारे बहुत अच्छे दोस्त है पुरुषोत्तम कुमार जी है, विजय सिंह लखेरा जी है, और सतीश भाई के लिए और मानवार भाई के लिए, अनवार भाई जी के लिए, ओम प्रकाश नेमा जी के लिए, और श्रीकांत जोशी जी महाराष्ट्र। तो दोस्त बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ, भाई हला भटकी
0: ओके
1: रही है।
0: जी जी जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर से वार्तालाप कर रहा हूँ। बंधु
0: बाहुबली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आप जैसे बड़े बुजुर्ग जब हमसे बातें करते हैं और अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है।
1: मुद्दत से दूर थे तुम हम, मिलना अच्छा लगा। सागर से गहरी लगी आपकी दोस्ती, ऐसा तो आता था मगर डूबना अच्छा लगा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी शायरी से आपने शुरुआत की आज की बातचीत को। जी, आप कैसे हो बताइए।
1: माजी, मैं तो मस्त हूँ, आनंद में हूँ। आपकी मंगल कामना और प्रभु की छत्र छाया में 84 साल के उम्र में मस्त और सुचारू रूप से जीवन यापन चल रहा है बंधु।
0: क्या बात है, क्या बात है बाहुबली जी, बहुत ही अच्छा लगा। आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे हमेशा, हम यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं। कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: तो एक फिल्म प्यासा का गीत, जिसमें
0: जी
1: समाज में जो अपने बहने और माताओं की जो एक बोले तो बहुत ही नीचा दिखाने वाली परिस्थिति के ऊपर एक कवि ने बहुत ही अपने मार्मिक शब्दों में उसको उजागर किया है।
0: जी,
1: कहा है ही जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहा है। ऐसी बोल है उसके, और ये तो अपने पुराने शायर रहते
0: जी,
1: तो उनके जज्बात और उनके अंदर के रूह से जो शब्द निकलते वाकई उसमें कुछ भी वजन रहता है भाई साहब।
0: जी जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो जरूर सुनाएंगे आपको इस गीत को, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे आप इस गीत को बाहुबली जी?
1: अरे भाई साहब, ये कार्यक्रम में
0: जी
1: मुझे प्रवेश करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बहुत ही प्रिय हितचिंतक मित्र
0: जी
1: लोकेंद्र जी वर्मा ने मुझे सूचित किया।
0: अच्छा जी जी जी।
1: उनके निर्देशन में मैं प्रयत्न किया
0: जी,
1: और आप जैसे सुनिए अनाउंसर से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: और दो शब्दों का आदान प्रदान विचारों में
0: जी जी
1: जो
0: जी
1: दोनों के विचारों में एक सूत्रता दिखी
0: जी,
1: उससे मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है बंधु।
0: जी जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम धन्यवाद लोकेंद्र वर्मा साहब को भी करना चाहेंगे जिन्होंने आपको हमसे मिलवाया जी। तो
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं। नमस्कार।
1: ओके सर।
0: जी,
2: घर दिल कशी के ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के कहां

ये पुर पेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों के झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।

ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार नमस्कार, मैं असम से बात कर रहा हूँ, सुतपा भट्टाचार्या।
0: सुतपा दी, बहुत दिनों के बाद आपने कॉल किया।
1: बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, लगता नहीं।
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी, आजकल बहुत ज्यादा लोग कॉल करते हैं ना, इसीलिए थोड़ा बिजी रहता है लाइन। और कहिए आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हाँ मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और आपके वहाँ पे मौसम कैसा है?
1: मौसम तो सुहाना है,
0: सुहाना है,
1: बारिश
0: बारिश।
1: बारिश हो रहा है।
0: ओके ओके, बिष्टीपुर से।
1: जी,
0: ओके ओके, तो बोले ना आज के कौन फिल्म और गाना आपने सुनबेन?
1: गाना सुना दीजिए। फिल्म का नाम तो पता नहीं, गाने का बोले से
0: जी,
1: दिल में आसमां आंसू में रह गए।
0: दिल के अरमा आंसुओं में बह
1: दिल
0: गए।
1: के अरमां आंसू में रह
0: जी
1: गए।
0: जी जी हाँ जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: पहले तो आपके लिए,
0: धन्यवाद।
1: नूरी मैडम के लिए,
0: ओके जी जी जी हाँ
1: कुसुम
0: जी,
1: जी के लिए,
0: ओके, इन सब के साथ आप सुनना
1: अनुपमा
0: चाहेंगे?
1: भट्टाचार्या,
0: हाँ,
1: प्रमोदी चक्रवर्ती, बसंत लाल सूर्यवंशी, देवजीत दास, सतीश भाई, अमर सिंह साहू,
0: ओके
1: बपन आचार्य, सिंधु दास,
0: ओके।
1: श्रीकांत जोशी।
0: अच्छा, पीछे से अनुपदा आपको बोल रहे हैं ना? अनुपदा का आवाज भी सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं, जी जी जी
1: जी,
0: हाँ, कभी कभी हम लोग को नाम याद नहीं रहता है ना। जी
1: थैंक
0: जी
1: यू।
0: जी तो थैंक यू सो मच सुतपा दी कॉल करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
0: हारून साहब हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कैसे हैं सुनाइए।
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आपके इधर
0: जी
1: आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, हमारे यहाँ पे मौसम बहुत ही बढ़िया है, आपके वहाँ का क्या मिजाज है?
1: मौसम भैया कुछ गजब है, लू चल रही है, चल रही है, गर्मी पड़ रही है, उमस है खतरनाक।
0: जी जी जी जी, तो गर्मी से अपने को बचाए रखे, जब भी काम ना हो तो घर पर बैठे और हमारा कार्यक्रम सुने।
1: जी जी
0: जी, तो कहिए आज घर बैठे बैठे
1: मौसम, गर्मी के मौसम कैसा है आपके इधर?
0: हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार,
1: उमदा मौसम है, ठंडा मौसम है।
0: जी जी जी
1: जी, हमारे इधर तो आज ही तूफान चढ़ गया।
0: अच्छा अच्छा,
1: तूफान चढ़ गई, बारिश भी हो गई, अभी 10-15 रोज पेड़ वगैरह गिर गए हैं।
0: ओहो जी जी जी जी, ओके,
1: आज ही तूफान वगैरह हो गया जहाँ पर।
0: अच्छा, कभी आंधी तूफान तो अभी गर्मी, भीषण गर्मी। ओके,
1: अभी तो गर्मी अभी पड़ रही है 10 दिन रोज से।
0: बाप रे। जी जी जी जी, हाँ जी, तो खूब पानी पीजिए, अपने आप को गर्मी से बचाए रखिए।
1: ज्यादा बताते हैं पानी ज्यादा पिए, वो तो 24 महीने 12 महीने में तो।
0: जी जी जी जी, सही बात है,
1: समय हो गया, 2-3 महीनों से बातचीत हो रही है।
0: ओहो ऐसा, ओके ओके जी,
1: असल में कहा दूसरों को मौका भी मिलना जरूरी है।
0: हाँ जी, ये बात भी बहुत सही कही आपने हारून साहब, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। जी,
1: जी
0: तो कहिए आज कौन सा फिल्म गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है माफिया का, सुना देना।
0: ओके,
1: कुमार सानू का आवाज में सुना देना।
0: ओके,
1: दिल ये पागल,
0: दिल ये पागल है। ओके,
1: मंगल के दिन आएगा ना, टाइम चेंज।
0: हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ, शाम को FM पे होगा 7:35 को, और मीडियम वेव पे 8 बजे, 2 बार बजेगा कल रात को। जी
1: अच्छा,
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: ईटानगर में सब श्रोता सुनना है, सबके लिए है, परसम कुमार हैं, गजरा रूदी हैं, रुकेत वर्मा हैं, भगवान सिंह परमा सिंह हैं, रुकेत वर्मा हैं, और जो श्रोता सुनना है सबके लिए,
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो हारून जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
0: ओहो जी अमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप, सुनाइए।
1: सर
0: जी मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: जी मैं भी अच्छा ही हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी नहीं है, ज्यादा बारिश भी नहीं दे रहा है, ठंडा हो रहा है थोड़ा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी, हमारे यहाँ पे भी लगातार बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही प्यारा है। और आज खेत नहीं गए?
1: खेत में तो अभी नहीं गई है, थोड़ी
0: अच्छा।
1: देर बाद में जाना पड़ेगा पत्थर में।
0: ओके ओके ओके जी जी जी।
1: पानी नहीं हो रहा है बारिश होने से भी, हमारे पत्थर में काम करने के लिए थोड़ा
0: ओहो
1: लग रहा है
0: ओके
1: पानी
0: ओके
1: की वजह से।
0: अच्छा, पानी तो जरूरी है खेती के लिए। हाँ जी। तो बारिश नहीं हुई अभी तक?
1: बारिश तो हो रही है लेकिन
0: हल्का फुल्का ना,
1: हल्का सा बारिश आ रहा है।

0: भारी बारिश नहीं आ रहा इसलिए पानी नहीं हो रहा है पोखरे में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी ओ तो बिना पानी के तो खेती करना मुश्किल ही होगा
0: सामने तो
1: जी।
0: इसे नोटी वगैरह कुछ भी नहीं है इसलिए हमारा
1: ओहो
0: वहाँ पे स्लाप होने की भी चांस नहीं है ज्यादा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी ओके। अगर आपने सामने कोई नदी
0: वैसे
1: होता
0: तो
1: तो
0: जगह बहुत ही अच्छी है हमारा यहाँ पे,
1: अच्छा जी जी जी लेकिन पानी की
0: बारिश
1: कमी
0: होती
1: है।
0: है तो खेती कर सकता है, जो बारिश नहीं होता है तो खेती कर नहीं सकता है ज्यादा,
1: ओके मुश्किल होता है ना।
0: फसल नहीं मिलता है।
1: जी जी
0: हाँ
1: जी जी सही बात। तो हम आशा करते हैं जल्दी अच्छी बारिश हो ताकि आप खेती कर
0: हाँ
1: सकें।
0: हाँ
1: हाँ जी। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
0: आज मैं मिट्टू डन फिल्म का कह दो एक बार सजना ये गाना को सुना है।
1: ओके जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोग के साथ सुनना चाहेंगे।
0: मेरे दोस्त है भाईकुन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रमेश पात्र, रमेश प्रजापति, जगेंद्र रोंगटी, देवाशीष हजारिका, हितेंद्र दास, मीनल अहमद, अविनाश तैली जी है, और अनुप कुमार जी है, प्रेमजीत चक्रवर्ती है, और रमेश प्रजापति, और शारदा प्रसाद है, और राकेश है, गोल्डी पूरन वर्मा है, रमेश तलर है, और योगेश चांगरे, गौतम राय बोले, और बहुत सारे दोस्तों को, और साथ में आपको भी और नूरी मैडम को भी,
1: ओके।
0: और सभी अरुण एफएम और आकाशवाणी ईटानगर के सभी आर्टिस्ट के लिए
1: तो
0: मुझे
1: अमल जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद
0: बहुत
1: का
0: बहुत
1: गाना।
0: शुक्रिया सर।
1: जी जी नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते जवाहरलाल जी।
1: जी हाँ जी हाँ, मैं कच्छा से बोल रहा हूँ जवाहरलाल वर्मा
0: जी।
1: इतना बिजी है सर, हेलो फरमाइश क्या बोलूँ यार आपको।
0: जी जी जी जी, काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं ना हमसे।
1: जी हाँ जी हाँ जी, बहुत सारे श्रोताओं ने जुड़ते हैं
0: जी,
1: तो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: काफी समय पे ट्राई करते करते अभी लग गया।
0: अच्छा
1: सर
0: अच्छा जी जी, चलिए लग तो गया।
1: बहुत हाँ,
0: और
1: बहुत अच्छा
0: कहीं
1: लगता है।
0: आप कैसे हो?
1: ठीक ठाक हूँ सर, आप कैसी सर?
0: जी मैं भी बहुत ही ठीक ठाक हूँ। मौसम भी बढ़िया है आपके वहाँ, बारिश?
1: सर जी हाँ, बारिश तो होता रहे है, 2-3 दिन से हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी
1: और
0: जी
1: दिन में तो बहुत धूप है सर, बहुत गर्मी है,
0: ओहो ओके ओके।
1: बहुत गर्मी है।
0: अच्छा, तो काम ना हो तो बाहर ना निकले, यही अच्छा रहेगा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: जी हाँ
1: यही
0: जी
1: तो सही बात है सर।
0: जी जी जी घर पे बैठिए और रेडियो सुनिए। तो जवाहरलाल जी कहिए, आज कौन
1: गीत
0: सा फिल्म का
1: गाते
0: गीत,
1: चल
0: जी कौन सा फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत गाते चल 1970
0: गीत गाता चल।
1: महान गीतकार और सुरकार रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ वो सुर में साझा हुआ वो गाना सुना दीजिए, जसवंत सिंह के सर में, धरती मेरी माता पिता आसमान।
0: ओके, बहुत ही अच्छा गीत।
1: वो फिल्म में वो अभिनेता सचिन और सारिका जी ने अभिनय किया है, वो गाना मुझे सुना दीजिए
0: जी जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को
1: यार।
0: सुनाना
1: डेडिकेट
0: चाहेंगे?
1: तो करना चाहता हूँ सर पहले आपके,
0: जी जी धन्यवाद।
1: और हेलो फॉर्मर सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए।
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं?
1: जी हाँ जी हाँ सर।
0: जी हाँ। तो जवाहरलाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: हाँ धन्यवाद सर।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मुझे आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है। जी जी हमें
1: ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी सर।
0: जी और कैसा है मौसम आपके वहाँ?
1: जी सर बताना चाहूँगा काफी गर्मी है, 45-46 डिग्री के करीबन टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे।
0: ओहो जी जी जी जी
1: जी हाँ, मतलब घर से बाहर भी नहीं निकल सकते 10 बजे के बाद में।
0: जी जी जी जी
1: जी बस घर में रहे, कार्यक्रम सुने और मतलब
0: हाँ
1: ज्यादा पानी पिए।
0: जी जी
1: सभी
0: जी
1: श्रोताओं को मैं यही कहूँगा, हमारे आसपास वाले श्रोताओं को।
0: जी जी जी बिल्कुल सही बात कही आपने, अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें और रेडियो सुने
1: जी।
0: और
1: अगर
0: खूब
1: जाना
0: पानी
1: जरूरी
0: पिए।
1: हो तो एक कैप पहने, दस्ताने ले जाए साथ में और मुंह पे मतलब मास्क लगाए
0: जी
1: और पानी की बोतल साथ में ले जाए और समय समय पर। जी सर हाँ,
0: हाँ
1: मैं
0: जी हाँ
1: बताना
0: जी
1: चाहूंगा
0: जी
1: मोबाइल ऐप पे आपके कार्यक्रम सुनता हूँ ईटानगर के में और आकाशवाणी ईटानगर का नियमित श्रोता बन चुका हूँ।
0: जी
1: हमारे दोस्त है आकाशवाणी जो बताते रहते हैं कार्यक्रम के बारे में, लोकेंद्र वर्मा जी,
0: जी जी
1: उन्होंने
0: जी
1: मुझे काफी स्टेशन से जोड़ा है, उनका तहे दिल से शुक्रिया।
0: जी हम भी उन्हें धन्यवाद कहना चाहेंगे, काफी नए श्रोताओं को वो जोड़ते हैं हमसे। जी जी जी
1: जी बिल्कुल, उन्होंने उनके पास में सारी अपडेट आती रहती है ना, तो
0: जी हाँ
1: हमारा
0: जी
1: एक
0: हाँ जी
1: ग्रुप बना हुआ है हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप के माध्यम से, तो वो मतलब समय समय पे अपडेट डाल देते थे कि अभी इस कार्यक्रम का मतलब समय हो चुका है, सुनने का भी
0: ओके
1: समय बताते हैं वो और
0: ओके
1: रिकॉर्डिंग का भी समय बताते हैं।
0: क्या बात है क्या बात है। जी जी बहुत ही अच्छा
1: जी
0: काम कर रहे हैं लोकेंद्र वर्मा जी, तो उन्हें तो आप डेडिकेट करना ही चाहेंगे, तो कौन सा फिल्म का गीत आप डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी अनजाना फिल्म का गाना है कि जान चली जाए पिया नहीं जाए, ऐसा करके गाना है इसमें।
0: ओके हाँ जी
1: जी हाँ सर, ये गाना सुनना चाहूंगा और हमारे सभी ग्रुप के जितने भी मेंबर है ना सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा, इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी जी
1: जी सर, और
0: ओके
1: ये खजाना आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा।
0: हाँ जी हाँ
1: और
0: जी
1: सर जी सर मैं बताऊं आपको कि जब मैं कार्यक्रम सुनूंगा ना तो इसको रिकॉर्ड करके भी रखूंगा।
0: अच्छा क्या बात है। जी
1: जी
0: जी जी
1: सर
0: जी तो आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा, तो प्रेम सिंह जी सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हाँ, जय बजरंग रेडियो सोता संग बस स्टैंड बंडा वेली से लक्ष्मण को चाय वाले वो चाय पी लो।
0: जी लक्ष्मण जी, चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी में मगर कैसे चाय पी?
1: मगर चाय तो चाय, गर्मी को गर्मी मारती है।
0: जी जी, लोहे लोहा को काटता है वैसे ही। जी, गर्मी गर्मी को काट देता है जी।
1: हाँ
0: जी, जरूर चाय पियेंगे। और कहिए कैसे हो आप?
1: अच्छे हैं, भगवान की कृपा है, आप लोग कृपा, आप भी ठीक रहेंगे, ऐसे ही बिल्कुल कार्यक्रम मनोरंजन करते रहें।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहिए, आज गर्मी के मौसम में कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: आज गर्मी के मौसम में अनाड़ी पिक्चर का सुनवा रहे।
0: ओके, अनाड़ी पिक्चर का कौन सा गाना?
1: हमने सब कुछ सीखा, सीखी ना होते आजी।
0: ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, अनारी। हाँ, पुराना वाला?
1: हाँ, पुरानी वाला।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को डेडिकेट करेगा आप?
1: हमारे रहेंगे गजराज लोधी हैं, मांगीलाल चंदेल हैं, बसंतीलाल सुंदरकंद कटारे, ऋषिकेश तिवारी हैं, ये सब दोस्त हैं, ये सब न चाहे।
0: ओके, तो लक्ष्मण जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: ठीक है सर।
0: ओके, नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: सर नमस्ते जी, मैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंद

0: लेकिन वो बेमौसम बरसात जिसको कहते हैं।
1: जी जी जी जी ओके।
0: एक गाना में भी ये शब्द आया है, बेमौसम बरसात हो।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वही हुआ आपके साथ?
0: हाँ, तो अभी कुछ ऐसा ही इधर हुआ है।
1: ओके, तो कुछ महीना और रुकना पड़ेगा बारिश के लिए?
0: हाँ, बारिश के लिए अभी एक महीने का करीब करीब, जुलाई से।
1: अच्छा, बारिश होने की संभावना?
0: अभी इस साल बारिश कुछ लेट होने की उम्मीद है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ओके।
0: इस तरफ हमारे बुंदेलखंड में है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: लेट आने की संभावना है। आप क्या बोको बागरा साहब बोल रहे हैं क्या?
1: हाँ जी, मैं बोके बागरा बोल रहा हूँ।
0: वो मुझे लगा मुझे पहचानने में थोड़ी देर तो हुई।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी हो जाता है। तो सत्येंद्र जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
0: आज फिल्म इक्का राजा रानी का सुनवा दिया।
1: ओके, गाने के बोल।
0: मेरे सावरे सावरिया मुझ पे स्वतन को क्यों लाए।
1: ओहो हो, जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: अरे ये हमारा ग्रुप है, हेलो फरमाइश, एकता रेडियो श्रोता ग्रुप, ये इसके सभी सदस्य सुन लेंगे। एक में ही सबको समेट लिया है, एक तो वो सीधा ग्रुप का ही नाम ले दिया, अलग
1: जी,
0: अलग
1: जी,
0: नाम
1: जी,
0: लो
1: जी। हाँ जी,
0: एक
1: हाँ
0: आका
1: जी।
0: छूट गया तो वो नाराज हो जाते हैं कि हमारा नाम नहीं लिया।
1: जी जी जी बिल्कुल सही कहा।
0: तो इसलिए वो पूरा ग्रुप इन वन कर दिया।
1: ओके ओके, ग्रुप इन वन। जी जी जी। तो सत्येंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद के गाना। ओके।

0: की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: It is ironic that Pakistan with its long
4: time... ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
5: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड,
6: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
5: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
6: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30

ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30

0: जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज की फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम और तैयार हूँ आपके लिए एक दिलचस्प सफर लेकर जिसका नाम है हिट्स ऑफ 90s। हिट्स ऑफ 90s में हम आपको सुनाएंगे 90s के दशक के कुछ सुनहरे गाने। तो चलिए बीते पलों को करते हैं याद इन बेहतरीन गानों के साथ। तो चलिए दोस्तों आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, दिल तो पागल है। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर आप सभी श्रोताओं के साथ।

0: 4.90 km per liter. Smart Play Studio 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं।

0: to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
1: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं।

एक्टिंग की थी अजय देवगन और तब्बू की ये बेहतरीन फिल्म थी उस वक्त की। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, और इस बेहतरीन गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

तो दोस्तों, आज का ये म्यूजिकल सफर कुछ समय के लिए यहीं पर होता है समाप्त। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, जहां आपको मिलेगी देश और राज्य की ताजा खबरें, जिसके बाद आप सुनेंगे मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम और फिर थाई कामती श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे थाई कामती श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोताओं, दोस्तों, चलिए अब आपको ले चलते हैं एक और बेहतरीन कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है बॉलीवुड अपडेट्स। तो इसमें हम जानेंगे कि बॉलीवुड की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन कौन सी खबर जो घूम रही है बॉलीवुड की गलियों में। सबसे पहली जो खबर है, बॉबी देओल ने फिल्म एनिमल में विलेन का रोल निभाया था, मगर उनके पिता धर्मेंद्र शुरू में इस रोल से खुश नहीं थे। हाल ही में खुद एक्टर ने इस बात का खुलासा किया कि फिल्म के सक्सेस के बाद अपने पिता का जो पहला रिएक्शन क्या रहा वो उन्होंने बताया। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है, मगर उनसे जुड़ी बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। उनके बेटे सनी और बॉबी देओल अपने पिता की याद कर इमोशनल हो ही जाते हैं, और बॉबी ने हाल ही में अपने पिता धर्मेंद्र से जुड़ी कई सारे बातें की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एनिमल में जो विलन अबरार बने थे, जिसके लिए उन्होंने अच्छी खासी बॉडी भी बनाई थी, 3 घंटे की फिल्म में एक्टर का स्क्रीन टाइम मुश्किल से 30 मिनट था, लेकिन उन्होंने उतने टाइम में ऐसी छाप छोड़ी कि आज हर कोई उन्हें अपने लिए हर कोई उन्हें उसके लिए याद रखता है। और बॉबी की एनिमल की सक्सेस के बाद लॉर्ड बॉबी भी कहे जाने लगे थे। तो उन्होंने बताया कि जब मेरे पापा ने एनिमल देखी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम विलेन है, मैंने कहा हाँ पापा, लेकिन अच्छा रोल है। बाद में जब फिल्म हिट हुई तो पापा ने गर्व से मुझे कहा कि तू अब लॉर्ड बॉबी बन गया है। अगली खबर है, बंदर के साथ बॉबी देओल और डायरेक्टर अनुराग कश्यप की जोड़ी पहली बार साथ काम कर रही है। एक्टर ने अनुराग कश्यप फिल्म की अनूठी दुनिया में कदम रखते हुए बिल्कुल अलग और अनोखा रोल निभाया है। ये ठीक वैसा ही बेमिसाल एंटरटेनमेंट भरा किरदार है जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों की मिर्जापुर की धमाकेदार और विस्फोटक दुनिया में वापस जाने का इंतजार है। मिर्जापुर द मूवी से यह उम्मीद की जा रही है कि यह बड़े एक्शन सीन्स, नए ट्विस्ट, तीखे टकराव के और एक बड़े सिनेमाई अनुभव के साथ रोमांच को और बढ़ा देगी। अब एक्टर दिव्येदु ने मुन्ना भैया को फिर से निभाने पर बात की है, यानी कि वो अपना रोल फिर निभाएंगे। तो दोस्तों, हफ्ते का अंत होने से पहले ही सभी अपने OTT पे क्या देखना चाहते हैं वो प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस हफ्ते में मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। जैक रॉयन फ्रेंचाइजी का नया सीजन जैक रॉयन घोस्ट वॉर प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है। सतरंगी बदले का खेल ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज है जो G5 पर आई है। एक रियलिटी शो दुबई बिलिंग के तर्ज पर बना देसी बिलिंग नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका स्टारर कोर्टरूम ड्रामा फिल्म सिस्टम भी रिलीज हो गई है। इसमें सोनाक्षी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नेहा राजवंश का रोल निभा रही है। हॉरर थ्रिलर फिल्म ली क्रोनिन की फिल्म द मम्मी OTT पर रिलीज हो गई है। यह Amazon प्राइम पर आप देख सकते हैं। अगली है द सुपर मोरियो ब्रोज मूवी
के बाद आई एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी फिल्म द सुपर मारियो गैलेक्सी को अब आप ओटीटी पर देख सकते हैं। ये निंटेंडो के पॉपुलर वीडियो गेम सीरीज पर आधारित इस पिक्चर में मारियो और लुइस मशरूम किंगडम में रोजमर्रा की समस्याओं को हल करते नजर आएंगे। ये भी आप प्राइम पर देख सकते हैं। और आखिरी है गोट। नेटफ्लिक्स पर आई अनलिमिटेड फैमिली स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म गोट के चर्चे हो रहे हैं। इसकी कहानी विल नाम के एक छोटे से बकरे की है जो रोलर बॉल में प्रोफेशनल बनने का सपना देखता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म एक दीवाने की दीवानियत से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: श्रोतम दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बॉलीवुड अपडेट्स। आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुनेंगे वांचो श्रोताओं के समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि मेलेन मनी साम तातारिक ब्रेस्पोतिबार इपोहान सॉन्ग आजमबाजी पुनी मिनट मुल्क पिशम लिखम वांचो साइका पांग कपई पवन कहो पाई फाले वंग का वंगसुद यूनियन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर मिनिस्टर ज्योतिर आदित्य एम सिंधिया हिया चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू नि मनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फो हान पंग मके यूएसपी इनिशिएटिव मखंग एम मोकसा अंक्या प्रोजेक्ट कीवी मोथो होका डाबले मिस्टर सिंधिया ए हया बा माता सोशल मीडिया पोस्ट मा हया प्रोजेक्ट मो वन क्या मा होता पुजम अन्नत कुटी गुन सेन को ओदो एन क्या एम मोकसा अंग क्या हया मोथो ए कीवी पंजाक मानजाई मी थम हिया प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अचाक अजों ले फा क्या बो मा कीवी पंजाक नि अन्नत मखंग नि बंतकु पोंग वाई चीमा ले थमले च्वाक जाय क्या नि पुनी आगा तकु अंग जो अचों अचन ले फा अंग क्या ले वंदे हजा बामा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए हजा मोथो हाले होवांग वांगन क्या हान पक मा अंग स्टेट अंग क्या कीवी मानजा मी थम अंग ची मोंग मे का हो क्या बो मा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फॉर डेवलपमेंट हान पक मा हाले होने खटखी ले मोकसा हु मेले फा क्या हान पक मा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो ची मोंग तले जो मई हुते क्या काचू ngai ban le Union Minister of State for Petroleum and Gas and Tourism Suraj Gopi A Mani Arunachal Pradesh Anke Trade and Commerce Industries Ya Skill Development Minister Boma Haja Department Po Akho Kimi Tham Phai Ta Meeting Tu So Aso Apole Union Minister Gopi A Haja Mam State Ma Kya NFTI ta asu amai ke center ang jinge jawla achang pukuma state ang ke nokwe stakeholders tham azong among ang kya mot bo mahaja NFTI jinge jaw kya honui yang ma FTI NIT hia low college ning kya khat kha kha kya institute

0: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: अरे बोलना, मैंने उसे देखा तो।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपने रेडियो साथी आरजे पूनम के साथ। और चलिए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं जिंदगी दो पल की।

श्रोताओ दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और बेहतरीन गीत सुनाते हैं आपको, ओम शांति ओम फिल्म से केके की आवाज में।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इसी के साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर होती है समाप्त। उम्मीद है कि हमने आप श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया होगा। एफएम के कार्यक्रम जारी रहेंगे और आपके आगे के सफर के लिए जुड़ने वाले हैं आरजे मंजू। आज की दूसरी प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता अमित सक्सेना। तो श्रोताओं दोस्तों, अब मुझे यानी अपने आरजे साथी पूनम को दीजिए इजाजत और अब आप सुनेंगे तांगजा श्रोताओं के समाचारों को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो साथी आरजे मंजू के साथ।

आकाशवाणी इटानगर डिब्रुगढ़ मसौसा डुबा ट्रांगलई मेजिलिंग रंगख्रासी तारीख पांग हजनीरा खोकरोक पांग आरो रंगजा बलैबई खु मिनिट थोरे नांगसो तांसा प्रोग्राम तफांगलई मसौ रंगजा रुंगलांगरो कोन कोनका मामाइरो आचुंग सुरकैबं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया रनई अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र आस्था लक्ष्मी स्टेट तामंगरौ मनैसा यूएसपी इनिशिएटिभ जाखुंनां प्रोजेक्ट कीवी बतफांगत कुटी रसासीरा ला क्रोसेस नटका प्रोजेक्ट पकमसोमन मयंग प अमाय त्रयांगसी परम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसिंग प सहेंग रोरे केवी सेल्फ लाइफ प रंग्स नेदम आरो रंगसै अतक अरवांग रंग ब्लेम बंगा अतक तचेनचिंग ओरो त तचेनचिंग ओरो सिंधिया र सोशल मीडिया पोस्ट नांग फान त परजु इरे काम र लो वैल्यू प्रोड्यूस तांग प प्रीमियम प्रोडक्ट्स तंग कौनांग तयंगसी मोमन सिंधिया र फान्द प्रतुम नंग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र स्टेट वांग केवी खाइवन र मयंग म रंद त प्रजु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी र नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हानांग सेक्टर वाइज उन्नति तयंग म तानकुर खा मद प्राइम मिनिस्टर म रनपत हु त आचुंग सुरकैवांग स्टेट पेट्रोलियम ने नेचुरल गैस रा टूरियम मिनिस्टर सुरस गोपी र मनैसा स्टेट वांग ट्रेड एंड कॉमर्स रा इंडस्ट्रीज नई स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जम मनई परजु हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट तम जम रहमत नंग एन एफ टी आई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तयंग मनई परजु स्टेट दंगचोंग तयंग म स्टेट वांग स्टेक होल्डर्स मयंग पर नरी सचारंग रा रंगोरो त स्टेट नंग एफ टी आई नई एन आई टी रा लो कॉलेज तामसो अरे इंस्टीट्यूशन अर ताम प आजुंग हॉस्पिटल ताम अचानक कयांग प्रखा मयंग म इमरजेंसी रार प रायकुर म कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कुरंग रार मोरो त परजु इर इंस्टीट्यूशन ताम नंग लो एंड ऑर्डर प रायतात म पुलिस आउटपोस्ट प आखेक रार मो मिनिस्टर फांत नंग निफात कर न्यूवा हेंगडॉप नरी रतुंग रुंगो फांत मीटिंग नंग एडुकेशन कमिश्नर अमजद ताक नई होम नई आईपीआर कमिश्नर न्याली एटे रा इंडस्ट्रीज नई टेक्सटाइल रा स्किल डेवलपमेंट कमिश्नर मेसेस मेमुम तायंग टूरियम सेक्रेटरी आर मोवा आईजीपी चुकु आपा परम एफ टी आई वंग डायरेक्टर नई फोकल्टी मेंबर्स महिंग अतोंग जंग वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट डीसी कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर दिलीप कुमार र मनैसा बोमडिला नंग कामेंग क्लाफ नंग ईआरओस हेंग जम मनई एईआरओस हेंग जमरा बीएलओस परम पोलिटिकल पार्टी तामंग महेंग जम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कोऑर्डिनेशन कम ओरिएंटेशन मीटिंग कथुंग तो परजु मीटिंग कथुंग र अमिंग प फानकुत नंग डीसी र इलेक्शन ऑफिसर्स महेंग नई पोलिटिकल पार्टी तामंग महेंग रा परजु बहुत थोंगन महेंग ताम तुंकांग नंग कुरुमरो कम सोमरंग रा रुमो रोत मीटिंग नंग ईआरओस महेंग नई एईआरओस हेंगरा बीएलओस हेंग थोक्त नांगम आरो पंचायत वालांग हेंग नई पोलिटिकल पार्टी तामबांग महेंगरा परम सीनियर लीडर्स हेंग नई ऑफिसर्स महेंग रा सिंगमुंग महेंग दो थोक्त सियांग अपर मल्टीपर्पोज प्रोजेक्ट रांग मंगरो सीतांग केंगवांग महेंग रो मनैसा आसीहाय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू नंग साइन कुरित एमओयू पर बोलंग हेडक्वार्टर नंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नंग साइन कुरित परजु सीतांग केंगवांग वासर नई रहाय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंग साइन पर कुरित सीतांग केंग नंग मई तंका पर मुल्ला मजस बलई खाक आरवांग सनसासी तंका तामनसो प्रोजेक्ट पर कतोब्रो साइन कुरित मोफान्त
Arunachal Pradesh Literary Society APLS ra Luminous Lumar Dai Literary Award 2026 pa Tony Koyu ma Kum Rafanta. Tony Koyu ra Arunachal Pradesh nang literature nai language development tayang ma nari kam sumta. Tony Koyu ra Arunachal Pradesh wang Tani tribes ma ngurau first indigenous script Tani lipi pa takong ta. Arau Koyu ra Bharat Jyoti Award nai Sanskar Bharti Award ra Penguin Publication Award tam lapta nang ma arau Balibai Aryang Award tam lapta mai jang ra. Spare Corps Jakhung nang Indian Army wan Spare Head Division ra Tuting Sports Complex nang Siang Futsal Tournament Tathung Tawang Ahu Ma Tathung Ta Tournament Pa Machuling Rang Machet Tarik Ma Tathung Phang Ta Nang Thala Tim Pa Sre Nai Ra Par Ju Jachek Tim Pa Arum Kha Kachu Ta Physical Fitness Tahu Ma Nai Par Ju Nari Ma Competition Trayang Ma Ra Par Ma Border Ha Tam Nang Border Ha Nang Singamung Wa Mai Tungkang Nang Rom Pa Tachen Ma Tan Rau Tournament Khel Pa Tathung Ta Ngo Rok Ta Rung Rang Eta Nang Thum Ra

0: नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा डायलेक्ट न्यूज। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अरुण एफएम प्रसारण सभा में। थैंक यू सो मच पूनम जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत खूबसूरत बीते। श्रोता स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:28 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। डोंट बी अफ्रेड टू फेल, बी अफ्रेड नॉट टू ट्राई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि असफल होने से घबराइए नहीं। अगर आप असफल भी हो जाते हैं और कोशिश करते हैं, फिर भी आप कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करते हैं तो ये घबराने की बात जरूर है, क्योंकि आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, आप जहां पर हैं वहीं पर रह जाएंगे। इसीलिए कोशिश करना जरूरी है। नमस्कार श्रोता, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो। तो चलिए मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए लिए चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं ज्ञान एवं मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km/L. Smart Pay Studio, 15+ safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0-liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Good evening, Itanagar.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होंगी आपके साथ, जो है जिसका जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। तारों की झंझट से अब मिल गई राहत, ब्लूटूथ ने बढ़ा दी तकनीक की चाहत। बिना दूरी के दिलों सा रिश्ता निभाए, हर डिवाइस को आसानी से पास लाए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करेंगे ब्लूटूथ के आविष्कार के बारे में, जिन्होंने हमारी काम को कितना आसान बना दिया। दोस्तों, जाप हर्टसन को ब्लूटूथ तकनीक का मुख्य आविष्कारक माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1994 में स्वीडन की दूर संचार कंपनी एरिक्सन में काम करते हुए इस तकनीक पर शोध करना शुरू कर दिया। उस समय मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जोड़ने के लिए तारों यानी कि केबल्स का उपयोग करना पड़ता था, जो बिल्कुल भी असुविधाजनक था। इसीलिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता महसूस हुई जो कम दूरी पर बिना तार के डेटा का आदान प्रदान यानी कि डेटा ट्रांसफर आसानी से कर सके। ब्लूटूथ की शुरुआत कैसे हुई, चलिए बताती हूँ। 1990 के दशक में मोबाइल फोन तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, लेकिन उन्हें कंप्यूटर या अन्य उपकरणों से जोड़ना कठिन था। एरिक्सन कंपनी चाहती थी कि मोबाइल फोन और अन्य उपकरण बिना किसी तार के आपस में जुड़ सके। इसी उद्देश्य से जाप हर्टसन और उनकी टीम ने एक कम ऊर्जा यानी कि लो पावर वाली वायरलेस तकनीक विकसित करनी शुरू कर दी। मोबाइल और कंप्यूटर के बीच डेटा भेजना बिना तार के, हेडसेट को मोबाइल से जोड़ना, कम बिजली का खर्च करना, कम दूरी में तेज और सुरक्षित कनेक्शन देना ब्लूटूथ का काम था। हराल्ड ब्लूटूथ नाम का डेनमार्क के 10वीं शताब्दी के राजा के नाम पर इसका नाम ब्लूटूथ पड़ा। उनका पूरा नाम हराल्ड गॉम्सन था। कहा जाता था कि उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे के विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट किया था। इसी विचार से प्रेरित होकर इस तकनीक का नाम ब्लूटूथ रखा गया, क्योंकि वह भी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आपस में जोड़ती थी। आगे आपको और भी बताऊंगी, ब्लूटूथ से आविष्कार से जुड़ी और भी बातें करेंगे। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, और इसी तरह से बने रहे हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

तो श्रोता, अभी अभी आपने आनंद लिया रंग दे बसंती फिल्म के गीत का। आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का। और इस कार्यक्रम के दौरान आज हम बातें कर रहे हैं ब्लूटूथ के आविष्कार से जुड़ी। दोस्तों, ब्लूटूथ नाम पहले टेम्प्रेरी था, लेकिन बाद में यही इतना लोकप्रिय हो गया कि स्थायी नाम बन गया। ब्लूटूथ का लोगो भी खास है। यह प्राचीन नॉर्डिक अक्षरों में यानी कि एच और बी हराल्ड ब्लूटूथ के इनिशियल्स को मिलाकर बनाया गया है। ब्लूटूथ के विकास में बहुत सारी कंपनियां जुड़ी। सन 1998 में कई बड़ी कंपनियों ने मिलकर ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बनाई। इसमें शामिल प्रमुख कंपनियां थी एरिक्सन, आईबीएम, इंटेल, नोकिया और तोशिबा। इन कंपनियों ने मिलकर ब्लूटूथ तकनीक के नियम और स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि अलग अलग कंपनियों के उपकरण आसानी से जुड़ सके। ब्लूटूथ का आविष्कार लोगों के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से ही किया गया था। 1994 में शुरू हुई यह तकनीक आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वायरलेस तकनीकों में से एक बन चुकी है। इसकी मदद से लोग बिना किसी तार के आसानी से अपने उपकरणों को जोड़कर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए ब्लूटूथ के आविष्कार से कितना बड़ा फायदा हुआ है। और आपको तो पता ही है कि ब्लूटूथ का नाम कैसे ब्लूटूथ पड़ गया। जैसे कि मैंने बताया ही है आपको कि ये एक बहुत ही पुराने यानी कि हराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर पड़ा, जो डेनमार्क के 10वीं शताब्दी के राजा थे हराल्ड ब्लूटूथ। पूरा नाम हराल्ड ग्रॉमसन कहा जाता था उनका, और उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे के विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट किया था। इसी विचार से, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अलग अलग शहरों को एकजुट किया, इसी विचार से प्रेरित होकर इस तकनीकी का नाम ब्लूटूथ रखा गया था। और ये पहले ये नाम टेम्प्रेरी था, लेकिन इसके बाद इस नाम को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये परमानेंट हो गया।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे इस गीत को अनजाना अनजानी फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज आपने जरूर जान लिया होगा कि ब्लूटूथ का आविष्कार कैसे हुआ था, क्योंकि इस बात का जानना भी जरूरी है कि इसकी आविष्कार कैसे हुई थी, क्योंकि आज की जिंदगी में हम ज्यादातर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते ही है। ऐसा कोई ही शायद होगा जो ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं जानता या नहीं किया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि ब्लूटूथ की आविष्कार कैसे हुई थी। फिलहाल बता दो आपको कि इसी के साथ ही हमारी आज की गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिक्स द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अष्टलक्ष्मी राज्यों के यूएसपी पहल के अंतर्गत प्रोजेक्ट कीवी का शुभारंभ किया। पेट्रोलियम एवं गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अरुणाचल प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग तथा कौशल विकास मंत्री एवं विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले, वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई है। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोप, मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को दोहराया है कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिक्स द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक का प्रयोग केवल मानव शरीर पर

0: लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण स्वास्थ्य रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का अनुग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि आगमन के 21 दिन के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों से दर्शाता है।
1: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए यूएसपी पहल के अंतर्गत प्रोजेक्ट कीवी का शुभारंभ किया। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री सिंधिया ने जानकारी दी है कि 167 करोड़ रुपए का यह मिशन किसानों को सशक्त बनाने के साथ ही मूल्य श्रृंखला और प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करेगा तथा कीवी के शेल्फ लाइफ को 7 से 10 दिनों के बढ़ाकर लगभग 45 दिनों तक करेगा। उन्होंने कहा है कि यह पहल कम मूल्य वाले उत्पादों के फ्रीज ड्राइज कीवी जूस और कैंडी जैसे प्रीमियम उत्पादों में परिवर्तित करेगी, जिससे स्थानीय समुदायों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के सभी कीवी उत्पादक किसानों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बधाई दी और तथा पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र के अनुसार विकास के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। पेट्रोलियम एवं गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अरुणाचल प्रदेश के व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग तथा कौशल विकास मंत्री और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के सभी हितधारकों से एनएफटीआई को उत्कृष्टता केंद्र तथा इस क्षेत्र में राज्य और राष्ट्र की संपत्ति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में एफटीआई, एनआईटी, लॉ कॉलेज सहित कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है, इसलिए स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य और आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, क्योंकि यह संस्था मुख्य अस्पतालों से काफी दूर स्थित की गई है। उन्होंने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पुलिस चौकसी स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा आयुक्त अमजाद ताक, गृह एवं आईपीआर आयुक्त न्याली अट, उद्योग वस्त्र एवं कौशल विकास आयुक्त मीमुम तायंग, पर्यटन सचिव आर गोवा, आईजीपी चुखुआपा, निदेशक डीन तथा एफटीआई के अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिक्षा शिक्षु केंद्र और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होंगे। अधिकारियों ने बताया है कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता से सभा की प्रतिक्रियाओं को एकरूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी।

0: लगती है। ये चाय है जनाब, मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।
1: मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच कल तक देश के पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे और कर्नाटक में तेज बारिश हो सकती है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कुरुंग कुमे, क्रादादी, सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा है कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार संभावना प्रदान करता है, वहीं से ठोस नियमों, गहन शोध और नीतिगत निगरानी द्वारा सही दिशा में दी जानी चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Morgan Bagra. Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in a joint statement reaffirmed their commitment to cooperate on the India-Middle East Economic Corridor, IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. In a joint press conference with Prime Minister Narendra Modi in Rome, Italian Prime Minister Giorgia Meloni described IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the Middle East and India with the potential to strengthen trade, investment and supply chain resilience. Ms. Meloni said strengthening interconnectivity between the regions remains an important priority and added that both countries strongly support the development of the corridor. The two prime ministers also reaffirmed that innovation, science and technology are core drivers of the India-Italy partnership. Prime Minister Narendra Modi said Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The government has said that no cosmetic product is permitted to be used as an injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. The Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO, has said that cosmetics are only intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on the human body. It said that the manufacture and import of cosmetics for sale and distribution are regulated under the provisions of the Cosmetics Rules 2020. CDSCO said the use of prohibited ingredients in cosmetic products, misleading claims on the label, use of cosmetics for treatment and the application of cosmetics through injection attract violations of the Act and rules. The Directorate General of Health Services has issued an advisory regarding Ebola disease for passengers arriving from or transiting through affected countries. According to the advisory, travelers who have visited high-risk countries, including the Democratic of Congo, Uganda and South Sudan, are experiencing symptoms such as fever, headache, muscle pain, unexplained bleeding and vomiting have been urged to seek immediate medical attention. It has also warned that passengers who have had direct contact with blood or body fluids of a suspected or confirmed Ebola patient must report immediately to the airport health officer or health desk before immigration clearance. Union Health Minister JP Nadda has said that India has undertaken one of the world's largest screening and early detection efforts to eliminate tuberculosis under the National Tuberculosis Elimination Program. Mr. Nadda said this while addressing an event on ministerial perspectives on lung health screening during the 79th session of the World Health Assembly in Geneva. The minister further informed that India has significantly scaled up modern diagnostics to detect TB and other lung diseases. Union Road Transport and Highways Minister

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो मनोरंजन के इस सिलसिले को चलिए जारी रखते हैं और लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की ओर।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Arkemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

दोस्तों, गीत संगीत हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का भी एक सुंदर माध्यम है। पहला गीत श्रोता कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आप सुन रहे हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से सोनू निगम और प्रीतम की आवाजों में।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र

जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

0: दोस्तों, मजेदार गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर। और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को दबंग 3 फिल्म से मुस्कान और सलमान अली की आवाजों में।

0: श्रोता, अभी आपने सुना इस गीत को चमेली फिल्म से सुनिधि चौहान की आवाज में, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला रुकेगा नहीं। ये अरुण एफएम है जहां आपका मनोरंजन यूं ही होते ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न लें।

पीने का पानी, आवश्यक दवाइयाँ, टॉर्च और बैटरियाँ जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता कुर्बान फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ दोस्तों, मजेदार गीतों के साथ साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्हें आप सभी दिलोजान से चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं किंग्स इलेवन पंजाब की को ऑनर और डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा के बारे में। 31 जनवरी 1975 को उनका जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके माता पिता का नाम दुर्गानंद जिंता और नील प्रभा है। प्रीति के पापा इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। जब प्रीति 13 साल की थी तभी उनका एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। इस एक्सीडेंट में उनकी मां भी गंभीर रूप से घायल थी। इसके कारण वह 2 साल तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। काफी इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार आया।

इस हादसे का प्रीति जिंटा के लाइफ पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो समय से पहले ही मैच्योर हो गई थी। प्रीति की स्कूलिंग शिमला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस और मैरी स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट बेरे कॉलेज शिमला से आगे की पढ़ाई की। प्रीति बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन क्रिमिनल साइकोलॉजी से की। दोस्तों, इसी तरह से प्रीति जिंटा के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे आज इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि कार्यक्रम आज के कलाकार के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का सोल्जर फिल्म से।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

श्रोता, आप आनंद ले रहे थे इस गीत का सोल्जर फिल्म से, कुमार शानू और अलका यज्ञ की आवाजों में। और बता दो आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का, और इस दौरान हम बातें कर रहे हैं पंजाब किंग्स की को ऑनर और आप सभी की यानी कि हम सभी की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा के बारे में। 1996 में दोस्त के बर्थडे पार्टी में प्रीति जिंटा की मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई जिसने उन्हें चॉकलेट कमर्शियल में काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद प्रीति ने कई विज्ञापनों में काम किया। 1997 में एक ऑडिशन के दौरान शेखर कपूर ने प्रीति को देखा और उन्हें एक्ट्रेस बनने की सलाह दी। और फिर क्या था, शेखर कपूर प्रीति और ऋतिक रोशन को लेकर तारा रंपम बनाने वाले थे लेकिन ये कैंसिल हो गई। इसके बाद प्रीति ने कुंदन शाह की फिल्म क्या कहना में काम किया लेकिन ये फिल्म 2 साल तक अटकी रही। इस दौरान प्रीति दिल से और सोल्जर जैसी फिल्मों में नजर आई और उनका फिल्मी करियर इसी तरह से चल निकला। 2016 की शुरुआत में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अमेरिकन सिटीजन जीन गुड इनफ से शादी कर ली थी। 29 फरवरी को जोड़ी ने लॉस एंजलिस में एक प्राइवेट सेरेमनी में 7 फेरे लिए। लगभग 6 महीने बाद प्रीति और जीन की वेडिंग फोटोज सामने आई थी।

दोस्तों, प्रीति जिंटा के बारे में बात करें तो प्रीति जिंटा, जी हाँ, पंजाब किंग्स की को ओनर तो है ही है और अपना फिल्मी करियर के अलावा भी पंजाब किंग्स की को ओनर होते हुए वह आज 2008 में प्रीति जिंटा ने फ्रेंचाइजी में लगभग 35 करोड़ रुपए का निवेश किया था, लेकिन आज के समय में इस फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू है 1200 करोड़ से भी अधिक, जिससे उनका ये निवेश उनके लिए सबसे सफल और लाभदायक सेलिब्रिटी बिजनेस फैसलों में से एक माना जाता है।

0: श्रोता, अभी आपने आनंद लिया इस गीत का कल हो ना हो फिल्म से। दोस्तों, पंजाब किंग्स के अलावा 2017 में प्रीति जिंटा ने साउथ अफ्रीका की T20 लीग की भी एक टीम खरीदी थी। और इसी के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ही अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है।

नमस्कार श्रोता, अरुण एफएम प्रसारण सभा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए श्रोता, मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 700-5760-115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

श्रोता, आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद ले रहे हैं मजेदार गीतों का। इस वक्त आप सुन रहे हैं इस गीत को सपने साजन की फिल्म से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: नीति मोहन और सुखविंदर वडाली के गाए हुए इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब आगे लिए चलते हैं आपको स्थानीय गीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम अपना गीत का।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अता। दोस्तों, आजकल हम अपने ऊपर काम करने से ज्यादा कंपैरिजन में वक्त जाया करते हैं। मैं ये नहीं बन पाया या बन पाई, मेरे दोस्त के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं।

न जाने कितनी बातें सोचकर हम अपने दिमाग पे बहुत बड़ा सा बोझ डाल के बैठ जाते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगी, ये सारी बातें ना वक्त जाया करने से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को देखकर खुद को उनके साथ कंपेयर करके क्यों दिल को छोटा करना है, बल्कि अपने हिस्से का मेहनत करते रहना है और खुद से बनाई इस जिंदगी को शान से जीना है। कहते हैं ना, कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह नहीं देना चाहिए, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूस पैदा करती है। जी हाँ श्रोताओ, इतनी सारी भूमिका मैं यूं ही नहीं बांध रही हूँ। कार्यक्रम का पहला गीत मायूसी से भरा है, तो सोचा कि आपको पहले ही आगाह कर दूं। तागिन गीत है तारा कोदा की आवाज में, चलिए आनंद लेते हैं।

श्रोता सुन रहे थे दाम्पी जिलेन की आवाज में गालो गीत। आपने ट्यून किया है अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ज और कार्यक्रम चल रहा है अपना गीत। अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें ईटानगर से बाहर भी सुन सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड करना है न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ज यानी अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ज पर क्लिक करना है और इसी तरह आप हमें सुन सकते हैं देश के किसी भी कोने से। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अजाती मीमी की आवाज में सुनते हैं ईदू गीत।

दोस्तों, अगर देखा जाए तो कई उतार चढ़ाव, खुशी गम, अपने पराये, सफलता असफलता, इन सभी चीजों के बाद अंत में मंजिल जो है ना, मन की या आत्मा की शांति ही होती है। और एक बात बताओ आपको, ये जो मन है ना, इसको शांत करना भी एक कला है जो अक्सर लोगों को नहीं आती। जी हाँ, तो इस कार्यक्रम में आपको मैं बताने वाली हूँ वो एक शब्द, एक ही शब्द लगते हैं इस मन को शांत करने के लिए। ना ना, पहेलियां नहीं बुझा रही हूँ, बता रही हूँ कि ये जो स्वीकार शब्द है, स्वीकार यानी कि एक्सेप्टेंस, यही वो एक शब्द है, वो मंत्र है जो हमें शांति देता है। अगर हम खुद को, आसपास की चीजों को या हालातों को स्वीकारते हैं तो इस मन को यहाँ वहाँ दौड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्याय को स्वीकार करें, अत्याचार को स्वीकार करें, बिल्कुल भी नहीं। और हालातों को स्वीकार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम कोशिश करना बंद कर दें, हम मेहनत करना बंद कर दें और हम उम्मीद करना बंद कर दें। लेकिन जिस चीज पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस हालात को हम बदल नहीं सकते, उस चीज को स्वीकारना, उस चीज के साथ चलना, उसी को स्वीकारना कहते हैं। एक बार करके देखिए। तो चलिए, अब एक और गीत सुनाने का वक्त हो चला है और ये गीत है चेरा तारिंग की आवाज में, निशी भाषा में।

श्रोता तकबुल लेगो की आवाज में आप सुन रहे थे आदि गीत, और इसी आदि गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आए होंगे, और इसी आशा के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए श्रोता, इस बार समय हो चला है कुछ पाश्चात्य संगीतों का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए दोस्तों, अब समय हो गया है पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

पुराने फिल्मी गीतों में सिर्फ गाने नहीं होते, ये दिल के सबसे खूबसूरत अफसाने होते हैं। हर शब्द में प्यार, हर सुर में एहसास, इनसे ही तो जीवन के रंग सुहाने होते हैं। स्वागत करती हूँ श्रोता आप सभी का कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत में। और पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए अभिलाषा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

कभी रेडियो की आवाज में जो सुकून था, पुराने गीतों में छुपा दिल का जुनून था। आज भी सुन ले अगर वो प्यारे नगमे, लगता है जैसे फिर वही मौसम पुराना था। श्रोता, आप सुन रहे हैं इस गीत को पेइंग गेस्ट फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। दिल होम होम करे उन्हीं में से एक है। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। इस गीत की धुन दिल की खामोशी को भी आवाज देती है। पुराने गीतों का जादू यही है, शब्द कम पर एहसास गहरे होते हैं।

दोस्तों, जब दिल की बातें शब्दों में न उतरे तब ऐसे गीत दिल का सहारा बन जाते हैं। कुछ नगमे वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि यादों में और भी खूबसूरत हो जाते हैं। बता दो आपको कि आप सुन रहे हैं इस गीत को किशोर कुमार की आवाज में बेमिसाल फिल्म से।

श्रोता, जाने मन जैसे गीत हमें बताते हैं कि संगीत की सादगी भी कितनी खूबसूरत हो सकती है। पुराने गीतों का जादू यही है, कम शब्द, गहरे एहसास और दिल को छू लेने वाली धुन। आप सुन रहे हैं इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, छोटी सी बात फिल्म से।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन।

0: श्रुता परोसन फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।
1: नमस्कार, कंट्री वाइड कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे देश में हीट वेव की वर्तमान स्थिति और आगामी मौसम के पूर्वानुमान पर चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक। डॉक्टर पटनायक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि हीट वेव वास्तव में है क्या, किस स्थिति को हीट वेव समझा जा सकता है।
2: देखिए, हीट वेव जो हमारा समर में जो आता है, जैसे कि हम डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो 40 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए कोई भी स्टेशन का, और जो हम डिपार्चर जैसे आज का टेम्परेचर कुछ है तो नॉर्मली कितना रहता है और 40 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको हीट वेव कहते हैं। जब डिपार्चर 6.5 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल से तो उसको सीवियर हीट वेव कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि समर में मई महीने में जून महीने में अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाता है कि लगभग बहुत जगह में हीट वेव प्रिवेल करता है।
1: अगर देखा जाए तो इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अत्यधिक गर्मी और हीट वेव की घटनाएं हो रही हैं। कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही हम इस तरह का देखने को मिल रहा है, तो ये जो पैटर्न है इससे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या कारण है फिलहाल?
2: अभी जो फिलहाल जो स्थिति है हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हीट वेव का प्रभाव है और उसमें रेड कलर का वार्निंग दिए हुए हैं, और ये लगभग इसी रीजन में हम अगले 3 दिन तक यही रहेगा। बाकी जगह में भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है। मुख्य तो ये तीनों जो बताया मैंने, ईस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन, इसमें हमको रेड कलर भी वार्निंग दिया है। काल का अगर तापमान देखा जाएगा तो बहुत जगह में कंट्री के 40 से 47 डिग्री के बीच में उस जगह में टेम्परेचर रहा। सबसे अधिकतम टेम्परेचर जो काल था, काल बांडा में ईस्ट उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री। तो ये एक बेल्ट है जो है उसमें ज्यादा है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दिल्ली हरियाणा पंजाब इसी एरिया में भी है, आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ एरिया में भी, झारखंड एरिया में भी है, थोड़ा सा जो गुजरात के कोस्टल एरिया और जो कि महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया कर्नाटक कोस्टल एरिया वहाँ थोड़ा नहीं है, बाकी लगभग बहुत जगह में अभी ये स्थिति बना हुआ है।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी आपने रेड कलर ऑरेंज अलर्ट की बात की, तो एक सामान्य इंसान अगर समझना चाहे तो क्या वो समझ सकता है कि येलो ऑरेंज और रेड अलर्ट का अगर हीट वेव का जारी किया गया है इस तरह के अलर्ट, तो उनका महत्व क्या है और इन चेतावनियों को उन्हें किस तरह से लेना चाहिए?
2: हीट वेव भी आजकल स्लो क्लियर हो जाता है, इसी हीट वेव चलते बहुत कर कैजुअलिटी भी होता है। जब हम टेम्परेचर का वार्निंग देते हैं, ये जो पिक्टोरियल फॉर्म जो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम दिया जाता है तो उसको लोगों का नजर में अच्छा से आता है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से जो डिजास्टर मैनेजर है वो ले पाते, इसलिए हम कलर कोडिंग का वार्निंग उसको बोलते हैं, कलर कोडिंग वार्निंग देते हैं। तो हमें 4 कलर जैसे कि ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड, ये 4 कलर में देते हैं। तो ग्रीन अगर दिया गया है तो उसमें हीट वेव का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जहां येलो है तो थोड़ा सावधानी होना पड़ेगा, येलो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक हो गया, लेकिन जब ऑरेंज है तो ये वार्निंग है। एंड अगर रेड दे दिया मतलब टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो भी एक्शन है, बाहर नहीं जाना है, आपको एक्सपोजर में नहीं करना है, काम नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं लेना है, पानी पीना, ये सब जो बाकी जो हमारा गाइडलाइन होता है कि ऐसे ऐसा स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, NDMA या बाकी बहुत सारे एजेंसी जो बताते हैं, यही हम कलर को वार्निंग दे के उन्होंने भी उसका ग्रेविटी सिचुएशन देख के उन्होंने वो बताते हैं और लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए।
1: एक सामान्य गर्मी होना और हीट वेव होना कई बार लोगों को लगता है कि जैसे एक जैसी बात है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो हीट वेव मतलब कितना अलग है सामान्य गर्मी से और इसमें जो इसकी अवधि होती है और वो तीव्रता होती है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में बढ़त देखने को मिल रही है, क्या इसे जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा जा सकता है?
2: जलवायु परिवर्तन हम किसको कहते हैं? हमारा जो तापमान जो है धीरे धीरे धरती का बढ़ रहा है, तो उसको अगर हम देखें लास्ट पिछले 30-40 साल देखेंगे तो उसका ट्रेंड बोलते जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारे चीज में, जैसा कि अभी एक्सट्रीम हीट वेव, हमारा हीट वेव है, उसका इंटेंसिटी मतलब ग्रेविटी जो कि बहुत होगा या लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये होता है। तभी थोड़ा ज्यादा दिन तक रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ये हीट वेव रिलेटेड के लिए भी उसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज का है।
1: डॉक्टर साहब, अगर अभी के समय की हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो हीट वेव का असर काफी हिस्सों में देखा जा रहा है। किन हिस्सों में इसकी एक्सट्रीम लहर देखने को मिल रही है और जहां लोगों को ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, जो प्रिकॉशंस होते हैं उन्हें करने की जरूरत है?
2: देश के बहुत जगह में अभी हमारा हीट वेव का प्रभाव है, ज्यादातर प्रभाव जो है बहुत ध्यान देना चाहिए कि पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये तीन राज्य जो है पूरा मध्य भाग में है, तो वहाँ बहुत रेड कलर का भी वार्निंग है, उसका आसपास समुद्र नहीं कुछ नहीं, तो उसका प्रभाव ज्यादा है, उसमें ज्यादा ध्यान देना है। उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगर ये देखेंगे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये एरिया में भी हमने ऑरेंज कलर भी दिए हुए हैं। देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये लगभग आने वाले दिन में रहेगा, कभी 5-6 दिन तक ये प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसा कि थोड़ा साउथ से, दक्षिण से थोड़ा सा वो घटता जाएगा, 4 दिन के बाद ना वहाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन अगले 3 दिन में काफी प्रभाव रहेगा इसी क्षेत्र में।
1: वैसे मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अब स्थानीय स्तर पर हाइपर लोकल फोरकास्टिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे हीट वेव जैसी परिस्थितियों से निपटने में लोगों को किस प्रकार सहायता मिल रही है?
2: ठीक है, हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है, हम क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन फोरकास्ट देंगे, लोकलाइज फोरकास्ट देंगे, हाइपर लोकल फोरकास्ट देंगे। दिल्ली में क्या है, आज मान लीजिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो और जगह जगह में 48 डिग्री भी हो रहा है, तो हाइपर लोकल में तापमान का नहीं, बाकी जो कभी कभी बहुत अचानक जो आपका ये भी हो जाता है कि थंडरस्टॉर्म होता है, बारिश बहुत हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, तो ये सब हमको मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जिसमें कि हम ये आपको स्पेसिफिक लोकेशन में शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब कि 1 दिन के अंदर आज ये सांप को

0: चार बजे के बाद क्या होगा, छह बजे के बाद क्या होगा, शाम को ये बहुत थंडरस्टॉर्म आएगा, हैवी रेनफॉल होगा, ये हाइपर लोकल फोरकास्ट जो है हम वही डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा काफी नया नया चीज हम इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राडार लगा रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल मॉडल जो कि फोरकास्ट देता है उसको हमने इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने AI ML का टेक्निक टूल भी हम उसमें लगा के उसे हाइपर लोकल फोरकास्ट को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने के लिए हम दूसरी दिशा में काम कर रहे हैं।
1: अगर शहरों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को लेकर के भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: अर्बन हीट आइलैंड ज्यादा का शहर में देखेंगे तो जो शहर का डेंस एरिया है, बीच वाला जो एरिया होगा, वहाँ बहुत सारे जो आपका कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे घर है, गाड़ी है, व्हीकल है, उसका भी टेम्परेचर में थोड़ा सा प्रभाव करता है। दूर थोड़ा चले जाएंगे तो थोड़ा सा गाँव जैसा होगा, पेड़ होगा, पौधा होगा, तो आपको लगेगा कि सिटी के अंदर में एक हॉट पॉकेट बन गया, 2-4 डिग्री का ज्यादा होगा उसे बाहर से। तो ये इसके लिए हम बोलते हैं कि आइलैंड जैसा कि बीच में आपका हीट आइलैंड, जैसे कि उसका 3-4 डिग्री ज्यादा बन जाएगा। और उसके लिए बहुत कारण है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपका शहरीकरण हो गया, बहुत में सिटी है, इंडस्ट्री है, आपका व्हीकल है, आपका AC है, तो इसके कारण थोड़ा सा सिटी के अंदर हमको 3-4 डिग्री कभी कभी ज्यादा मिलेगा, उसको अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं।
1: तो ऐसी स्थिति में स्कूलों की बात करें, दफ्तरों की बात करें, या फिर निर्माण स्थल जैसी जगह, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बड़ी संख्या में कामकाज करते हैं, वहां पर हीट एक्शन प्लान बनाना कितना जरूरी है?
0: भारत के अधिकतम राज्यों में हीट का प्रभाव है, तो हीट एक्शन प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब देखा गया कि हीट एक्शन प्लान करते गुजरात साइड में पहले स्टार्ट हुआ, बहुत सारे स्टेट राज्य में है, तो वो हीट एक्शन प्लान के वजह से जो हीट वेव में जितना रिलेटेड डेथ हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हीट एक्शन प्लान में क्या होता है कि एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके साथ रहता है, मेडिकल टीम आपके साथ रहते हैं, क्या करना है, देन आपका जो IMD की जो अर्ली वार्निंग दे रहे हैं वो उनके साथ रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने प्लान के हिसाब में पहला प्री सीजन, पहला समर से पहले उनको क्या करना है, तैयारी करेंगे, मल्टी इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो एक्शन प्लान। तो ये हीट एक्शन प्लान के तरफ अगर काम करेंगे तो हमारा जो हीट वेव रिलेटेड जो डेथ या बाकी जो सारे लॉसेस हो रहा है वो काफी कम हो रहा है भी, और हीट एक्शन प्लान का बहुत जरूरी है, ऑलरेडी बहुत सारे राज्य में ये हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी इफेक्टिव है।
1: डॉक्टर पटनायक, किसानों की अगर बात करें तो अत्यधिक गर्मी का जो हीट वेव का टाइम होता है, एक तरह से उनके लिए दोहरी चुनौती है, खेतों में काम भी करना और अपने आप को भी संभालना है, कामकाज पर और फसलों पर भी असर पड़ सकता है। तो मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से उनके लिए विशेष तौर पर सलाह जारी की जाती है?
0: उनके लिए तो अभी पूरा अत्यधिक गर्मी टाइम में उनको जितना कम एक्सपोजर होना चाहिए डायरेक्ट सनलाइट का, इतना वो करना चाहिए जो कि पार्टिकुलर टाइम होता है, या आपकी जो धूप में टाइम में मान लो 11 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे, इस टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। सुबह सुबह काम जो अर्ली आवर्स है उसमें थोड़ा काम को देखना पड़ेगा, या शाम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्सपोजर जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में आपको जितना भी होगा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर होते हैं वो, उनको काम करना ही पड़ता है, वो जाते हैं, लेकिन ये स्थिति में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट जो है उसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा।
1: डॉक्टर पटनायक, अभी हम देख रहे हैं कि कई बार ये हमें सुनने में आता है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया या इस रिकॉर्ड को पार कर गया, पिछले इतने वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग असर हम देखते हैं टेम्परेचर का, तो इसके पीछे स्थानीय मौसम की भूमिका होती है परिस्थितियों की, या फिर कोई वाह इफेक्ट की बात होती है जहाँ पर हम अल नीनो की भी चर्चा करते हैं कि उसका भी असर हो सकता है?
0: आपने बताया कि कुछ कुछ जगह रिकॉर्ड, तो हमारा टेम्परेचर होता है, मान लीजिए अगर एक स्टेशन को हमने फिक्स कर लिया, मान लो दिल्ली का, तो हर साल में तो सेम टेम्परेचर नहीं रहेगा, या हर दिन में भी सेम टेम्परेचर, अगर मई महीना ले लीजिए तो पूरा 31 डेज अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर के कारण काल देखेंगे तो 7 दिन के बाद 4 डिग्री कम बढ़ जाएगा, 4 डिग्री कम, ये चेंजेस जो होता है एक सीजन के अंदर ये तो होता है, लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड में देखा जाएगा, मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री का टेम्परेचर से ज्यादा कितना दिन हो रहा है, तो पहले महीने में कम दिन 40 हो रहा था बहुत पहले, अभी 40 से ज्यादा बहुत दिन हो रहा है, तो इसके चलते चलते कभी कभी हमारा एक एक दिन में कुछ रिकॉर्ड पर नया क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हमको एक्सट्रीम रेट बोलते हैं, वो ऑलरेडी हर मंथ का हर स्टेशन का हमारे पास मेंटेन रहता है कि अगर ये महीने में ये हफ्ते में अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो हम देखेंगे यस ये टेम्परेचर ये स्टेशन का सबसे अधिकतम अभी हो गया, तो ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि जैसे कि ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आपने जो एलिनो बात किया, एलिनो का भी प्रभाव रहता है, एलिनो के कारण तो आपका मानसून के में भी ज्यादा प्रभाव रहता है, और एलिनो के कारण बारिश भी कम होता है, और थोड़ा हीट वेव का भी प्रभाव होता है एलिनो के कारण, बट वो क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि एलिनो एक दिन में ये नहीं है, एक सीजन में एलिनो हो रहा है, कभी कभी लास्ट करता है एक साल तक भी एलिनो रहता है, तो उसके चलते ये जो

0: सीजन में है, उसी सीजन में एलिनो का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, ये इस टाइप का एलिनो के साथ हम लिंक कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे जो एक्सट्रीम होता है वो बाकी लोकल फैक्टर्स के भी ऊपर निर्भर करता है।
1: मॉनसून का आपने जिक्र किया था, अब जो आने वाला मॉनसून है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: मॉनसून का IMD फोरकास्ट देता है कि सीजन कैसा रहेगा, सीजन कैसा रहेगा, जो कि अप्रैल में हमने 13 अप्रैल को हमने ये इसके बारे में बताया कि एलिनो आ रहा है। एलिनो पहले बताया कि एलिनो जो है मॉनसून को थोड़ा सा खराब प्रभाव पकाता है, मतलब मॉनसून अच्छा नहीं होता जनरली अगर एलिनो होता है तो हमने जो अप्रैल में बताया कि एलिनो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जून में वीक एलिनो हो जाएगा, जुलाई में मॉडरेट एलिनो हो जाएगा, अगस्त में भी मॉडरेट एलिनो होगा, उसके बाद सितंबर में मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एलिनो होगा। ये हमारा जो फोरकास्ट, उसके चलते हमने मानसून का भी थोड़ा रेनफॉल कम आकलन किया है जो कि 92% जो दिया गया है, तो इसलिए एलिनो के चलते मानसून में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और इसका जानकारी हमने पब्लिक को, गवर्नमेंट को, सभी को 13 तारीख को दिया, हमने इसमें बताया है।
1: क्या मौसम विभाग ने ये अंदाजा लगाया कि किन इलाकों में बारिश कम रह सकती है या कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा हो सकती है इसके असर से?
0: जनरली स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बता रहे हैं कि जिस स्पेस में कौन सा नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, ये सब सारा, तो वो भी मैप हम दिए हुए हैं। लेकिन जब एक जगह में एक साल में अगर बारिश थोड़ा सा खराब है, जिसको हम बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से अगर कम बारिश हो रहा है, तो साधारण तक ये देखा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, मध्य भाग, नॉर्थ वेस्ट, इसमें तो साउथ में तो कम होने का चांस, थोड़ा सा साउथ पेनिनसुला जो उसी का कुटपा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। ये जनरल पैटर्न है, पूरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा राज्य में कैसा होगा वो मैप में भी हमने दिए हुए हैं।
1: एक सवाल महत्वपूर्ण बड़ा ये बचता है कि आम नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये संदेश हो कि वो किस तरह से इन स्थितियों में, खासतौर पे हीट वेव की परिस्थितियों में, अपनी देखभाल कैसे करें जिससे वो सुरक्षित रह सके।
0: हीट वेव के कारण हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी आ जाता है। पहला तो एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सन रे को एक्सपोज जो जितना कम होगा इतना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना जरूरी ना हो बाहर का जाके काम ना करे पड़े, एंड पानी सफिशियंट पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा मेडिसिन है कि आप पानी कंटिन्यूस पीते रहने, कहीं बाहर जाते हैं तो पानी अपने साथ में रहे, क्या क्या करोगे, एंड सनलाइट एक्सपोजर कम करना है, एंड आपका खाने पीने का भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, किस टाइप का खाना खाएंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो ये जो साधारण ज्ञान है ये हम बताते हैं, और लेकिन ये लोग को करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि कभी कभी टेम्परेचर के कारण आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, कोई कोई हार्ट पेशेंट वीक फैले उनको ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो आपको सब प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा गर्मी के टाइम में।
1: मौसम विभाग से तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह से जुड़े रह सकते हैं लोग?
0: मौसम विभाग तो हम सर अपडेट करते रहते हैं, हम जो परिस्थिति है जो हर दिन क्या करते हैं, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा, हर क्षेत्र में कैसा रहेगा, हर राज्य कैसा रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैसा रहेगा, और अगले 7 दिन तक हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने अगर दिन में भी कोई चेंज हो रहा है कि जो नाउ कास्टिंग बोलते हैं, आज दिन में सुबह आज कितना होगा, शाम को कितना होगा, कोई कहां अगर क्लाउड फॉर्म होके अगर बारिश हो रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, इसका भी जानकारी हम दिन के अंदर देते हैं। हमारा वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा बाकी मैकेनिज्म भी है, टीवी रेडियो उसमें भी आता है, तो आपको मौसम विभाग का जानकारी लेके आपको उसमें ध्यान देके आपको सही निर्णय लेके आपको अपने को बचाना है।
1: डॉक्टर पटनायक, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Country-wide.

देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस तथा एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 3 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में अश्मिता चाहिला मलेशिया की गो चिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हॉजमार्क से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के बाद से लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की है। भारत और मिस्र ने आतंकवाद का मुकाबला करने में द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत की पुष्टि की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों पक्षों ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारत और मिस्र के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक में पिछले वर्ष अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले और पिछले वर्ष नवम्बर में नई दिल्ली के लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा की गई। दोनों पक्षों ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों देशों ने निरंतर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, न्यायिक सहयोग, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान और सूचना साझाकरण के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक मिस्र में आयोजित की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कांगो और युगांडा में 21 मई तक इबोला संक्रमण के दुर्लभ बंडी बोगियो स्ट्रेन से जुड़े कुल 650 संदिग्ध मामले मिले हैं। संक्रमण से 144 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए कहा कि स्थिति अभी महामारी के स्तर पर नहीं है। लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह फैसला किया गया। शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों की नई तारीखें आपसी परामर्श से तय की जाएंगी और उचित समय पर उचित की जाएंगी। भारत ने अफ्रीका के लोगों और सरकारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है। WHO ने कहा है कि इबोला की इस विशेष स्ट्रेन के खिलाफ टीका तैयार होने में 9 महीने तक का समय लग सकता है। WHO के सलाहकार डॉक्टर वासी मूर्ति ने कहा कि इससे निपटने के लिए 2 संभावित टीके विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अभी इनका क्लिनिकल परीक्षण बाकी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर अहमदिया समुदाय के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देने और दमन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार को लिखे एक पत्र में मानवाधिकार संगठन ने कहा कि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को उत्पीड़न, धार्मिक अनुष्ठानों पर गैर कानूनी प्रतिबंध, मनमानी गिरफ्तारी, हिंसा और प्रशासनिक भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। एमनेस्टी ने प्रांतीय सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और कानून के समक्ष समानता सहित समुदाय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शांगला जिले में आज अलग अलग कोयला खदान दुर्घटनाओं में 2 खनिकों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। पहली घटना ओखरवाल कोयला खदान में हुई जबकि दूसरी घटना चपरमश्ती क्षेत्र में घटी। राहत और बचाव दलों तथा स्थानीय लोगों ने खदान में फंसे श्रमिकों को बाहर निकाला। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड

हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर करीब से कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ब्रिटेन ने खाड़ी की 6 देशों के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से मिलकर बने खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के साथ हुए इस समझौते से ब्रिटिश निर्यात पर लगभग 58 करोड़ पाउंड के वार्षिक शुल्क में कमी आने की उम्मीद है। जीसीसी समझौता ब्रिटेन की कीर स्टार्मर सरकार का तीसरा बड़ा व्यापार समझौता है। इससे पहले भारत और दक्षिण कोरिया के साथ ऐसे समझौते हो चुके हैं। 3 भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल 3 भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी, पाल पुनुरी संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। वहीं नेपाल की लाग्पा शेरपा रिकॉर्ड 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के सिलसिले में दुबई स्थित इंडियन पीपल्स फोरम के सदस्यों ने दुबई फ्रेम में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर चर्चा हुई और साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एकता और कल्याण का संदेश दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान पर अहमदिया समुदाय के खिलाफ दमन का आरोप लगाया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।